0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भूतेषु मा चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्लोक का अर्थ है, हे माता, सर्वत्र विराजमान और चंद्र घंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। हे माता, मुझे मेरे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। मान्यता अनुसार नवरात्रि के तृतीय दिन यानी आज के दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना करते हैं और इसके लिए सुबह सुबह निवृत्त होकर स्नान किया जाता है। स्नान पश्चात स्वच्छ कपड़े पहने जाते हैं। भूरे, सफेद व स्वर्ण रंग को माँ चंद्र घंटा का प्रिय माना जाता है, जिसके चलते देवी माँ की पूजा के दिन इन रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं। इसके पश्चात माँ चंद्र घंटा की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाया जाता है और माता रानी की आरती कर उन्हें अक्षत, सिंदूर, पुष्प और भोग आदि लगाते हैं। भोग में माँ चंद्र घंटा की प्रिय चीजें लगाई जा सकती हैं। इनमें केसर और दूध से तैयार की गई मिठाइयां, फल भी शामिल है। दूध से बने अन्य मिष्ठान भी माँ चंद्र घंटा को चढ़ाए जा सकते हैं और इस भोग को ही प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। भोग में शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक बार पुनः नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, मेरे यानी गगन के साथ।

नवरात्रि के तृतीय स्वरूप माँ चंद्र घंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की। मैं हूँ गगन और आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रि की चारों तरफ धूम होती है और नवरात्रि एक साल में चार बार आती है, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि। इनको हम बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग चैत्र और शारदीय नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि तांत्रिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है, ऐसा कहा जाता है। और आज के दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। ये धूम चारों तरफ दिशाओं में देखते ही बनती है। वातावरण बड़ा ही खुशनुमा होता है।

एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज का दिन चंद्र घंटा देवी को समर्पित है। ये सच है, नवरात्रों का त्योहार खुशियां लेकर आता है और यही प्रार्थना है माँ दुर्गा से कि वो हम सबको आशीष दें, हम सब खुश रहें, हमारी काया निरोगी काया रहे। ये भी सच है कि विधि विधान का हम बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं कि नवरात्रि पर किन किन खास बातों का ध्यान रखें। नवरात्रि पर 9 दिनों तक उपवास रखें। 9 दिनों तक देवी दुर्गा की विशेष पूजा और श्रृंगार करें। नवरात्रि पर हर रोज मंदिर जाएं, देवी माँ को प्रतिदिन जल अर्पित करें। नवरात्रि पर अखंड ज्योति जरूर जलाएं। अष्टमी और नवमी तिथि पर विशेष पूजा और कन्या पूजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये तो रही नवरात्रि पर क्या करने वाली बातें। अब जानेंगे नवरात्रि पर क्या न करें। जानेंगे जरूर मगर एक भक्ति गीत संगीत के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूँ गगन आपके साथ शारदा सवेरा में। जय माता दी।

जय माता दी। नवरात्रों की एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। अभी हमने बात की नवरात्रि पर किन किन खास बातों का ध्यान रखें। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि पर क्या न करें। भोजन की बात आती है तो विशेष तौर पर हमें साफ सफाई का ख्याल रखने की आवश्यकता है और साथ ही सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। घर के सदस्य अगर 9 दिनों तक व्रत नहीं रखे हुए हैं तो भी 9 दिनों तक भोजन में छौंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि पर खाने में मांसाहार, लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। नवरात्रि के दिनों में अगर आपने घर में कलश स्थापना किया हुआ है तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि पर दाढ़ी, नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि पर बेवजह किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये वो बातें हैं जिनको आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखें। आइए चलते हैं मधुर गीत संगीत की ओर, एक प्यारे भजन की ओर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

जय माता की। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नवरात्रि के 9 दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है, साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है, तन मन की शुद्धि के साथ व्रत रखे जाते हैं। क्या करें क्या ना करें, ये विशेष बातें मैंने अभी आपसे चर्चा की। खास बात यह है, नवरात्रि पर हर दिन उपवास, पूजा, आराधना, पाठ, आरती और माँ को भोग अर्पित करने के बाद सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशी का पाठ अवश्य किया जाता है। जो विधिवत पाठ करता है, माता रानी उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। दुर्गा सप्तशी में देवी को प्रसन्न करने के कई सिद्धि मंत्र हैं, जिसका जाप करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार 10 वर्ष तक की कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्याओं की पूजा की जाती है। कन्या पूजन में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्याओं को घर पर बुलाकर उनका पूजन और भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन से माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नवरात्रि आपके लिए शुभ हो, आज का दिन आपके लिए शुभ हो। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। जय माता दी।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: Hi, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

90.8 FM। जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मा चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है कि जब मैं बिंदास बोल, बिंदास बातें करता हूं या जिक्र करता हूं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक खास मेहमान को मैं आमंत्रित कर रहा होता हूं कार्यक्रम में और उनसे जुड़ी हुई बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। निश्चित तौर पर जब बातें होंगी तो कहीं ना कहीं म्यूजिक भी होगा, लेकिन जब आपको ये पता चले कि हरफन मौला हमारे साथ कोई शख्स जुड़ रहे हैं तो वाकई प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। जी हाँ, पढ़ने पढ़ाने की भी बातें होंगी, लेकिन जिंदगी को कैसे जिया जाए ये बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। म्यूजिक की बातें होंगी और मिमिक्री की बातें होंगी और सिंगिंग की बातें होंगी। तो इस तरीके से यूं कहें कि एक पैकेज है हमारे सामने हमारी शख्सियत। मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
3: कैसा लग रहा है सर शारदा के इस प्रांगण में आकर आपको?
4: जी मुझे बेहद खुशी है और आपका जो अंदाजे बयां है वो बेहद मुतासिर करने वाला है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे इस मुद्दे पे बातचीत करने का एक मौका शारदा रेडियो के अंदर मिल रहा है।
3: थैंक यू सर, ये मेरी खुश नसीबी है कि आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ कुछ मिमिक्री की जब बातें होती हैं, गीत संगीत की बातें होती हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई अपनी सी बात होने वाली है, मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। तो सर, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप मुझे प्लीज अपने बारे में बताएं कि किस शहर से आप ताल्लुक रखते हैं और यहाँ कैसे आना हुआ?
4: जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ है, जो भगवान बुद्ध की नगरी कही जाती है। भगवान बुद्ध को वहाँ पर निर्वाण मिला हुआ है, आज भी महात्मा बुद्ध वहाँ लेटे हुए हैं और दुनिया भर के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग वहाँ आते रहते हैं। हाल ही में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना है
3: जी।
4: और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस धरती से जुड़ा हुआ हूँ। वहां से फिर पढ़ने पढ़ाने का तरीका जो आपने कहा कि उसको देखते हुए मुझे शहर दर शहर भटकना पड़ा, और लेकिन मुझे शहर अच्छे मिले, जगह अच्छी मिली। वहां से फिर मैं बनारस गया और गोरखपुर होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और वहां से PhD तक की जो मेरी शिक्षा हुई है मास कम्युनिकेशन में वो पूरी हुई। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बनारस वैसे भी कहते हैं कि शहर एक अलहदा किस्म का है, तो बहुत सारी चीजें मैंने वहाँ कोशिश की सीखने की, जिसमें से म्यूजिक भी एक है और बहुत और भी बातें।
3: जैसे कि आप हमें बता भी रहे थे और मैंने अभी आपका एक गाना भी

0: ना माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने गाया है, गुनगुनाया है, उसके बारे में भी बातें करेंगे जरूर। तो इस क्षेत्र में आप मुझे बताएं कि ये जो स्टडी का क्षेत्र है, अध्ययन का क्षेत्र है, पठन पाठन का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं?
1: पिछले 15 वर्ष से मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन संस्थान और कुछ और अन्य संस्थानों में पहले जुड़ा रहा हूँ और अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। और मीडिया के विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने का, मैं पढ़ना ही कहूँगा, पढ़ाना तो मुझे लगता है कि बड़ी चीज है जो हमारे गुरुओं को आती थी।
0: अरे क्या,
1: हम कोशिश बस ये करते हैं कि कुछ कर सकें। वैसे भी मेरा ये अपना मानना है कि एजुकेशन का जो पर्पज है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट, नॉट टू इम्पोज ओन थॉट ऑन अदर्स। तो ये सीखना हर एक से हो सकता है। और ऋग्वेद की एक बहुत अच्छी सूक्ति है कि अनुभद्रा कृतो यंतु विश्वतः, लेट अस नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरीवेयर। और वी हैव बीन वेलकमिंग ऑल गुड थॉट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई इंडिया इज स्टिल सर्वाइविंग एंड इन अ विन-विन सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड।
0: नाइस नाइस। चलिए सर, आपसे बातचीत का जो सिलसिला है वाकई बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक मैं लेना चाह रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ, ये छोटी सी आपसे एक इल्तजा करूंगा कि अगर आपके अंदाज में कोई गाना हो जाए, क्योंकि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, सिंगर्स की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो उसी अंदाज में हम ब्रेक पर जाना चाहेंगे।
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा
0: ता चला गया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना। देवानंद साहब पर ये गाना फिल्माया गया है। सिंगर आई थिंक रफी साहब है या?
1: जी रफी साहब।
0: रफी साहब, क्या बात है, मैं भी सही पकड़ा हूँ। तो लिसनर्स, इस गाने को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। सच बात तो ये है कि जिंदगी में जितनी भी दिक्कत परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों का अच्छी तरीके से सामना करिए, और जब हम अच्छी तरीके से सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके जो परिणाम है वो सुखद होते हैं। एक ब्यूटीफुल ट्रैक, वो ब्यूटीफुल सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, जो हैं डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, एसोसिएट प्रोफेसर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली से। सो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चूंकि जिस फील्ड से आप आते हैं, ये जानना समझना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है कि जब आप पढ़ाई करते थे, आज आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो एक अलग बात है। आपने बहुत सादगी से अपनी बात रखी कि हम खुद सीख रहे हैं, सीखते समझते इंसान आगे बढ़ता है। कैसा लगता है कि कितना फासला आ गया है, कितना अंतर महसूस आप करते हैं उस समय की पढ़ाई में, आज की पढ़ाई में, या जो एक अदब का माहौल होता है, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, उसमें कितना अंतर महसूस करते हैं? दो बार
1: देखिए, फर्क तो जरूर है और हर दौर में होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और आज भी मुझे लगता है कि जो अच्छाइयां हैं वो मौजूद हैं और बुराइयां भी रहती हैं। गुड एंड एविल्स आर एवरीवेयर, इवन विद इन अस, वी विल हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज। और स्टूडेंट के तौर पे, शिष्य के रूप में जो मेरे सामने आता है, मैं उसको वैसे ही स्वीकार करता हूँ। जो मेरे पास आ गया वो रावण राम सब मेरे हैं और उनका ख्याल करना मेरा काम है। और जहां तक सीखने का बात है, तो रामानाथ अवस्थी की पंक्तियां हैं कि कौन यहाँ पर किसे पूछता, दुनिया है या नहीं जानी, पानी ढूंढ रहा प्यासे को, प्यासा ढूंढ रहा पानी। इफ यू हैव वर्दीनेस दैट विल रिफ्लेक्ट। तो पानी ढूंढ रहा प्यासे को, प्यासा ढूंढ रहा पानी, पानी है तो बरसेगा ही, पानी है तो बरसेगा ही, आंख में हो या बादल में, चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या आंचल में।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: बहुत तो जिस बच्चे को जो करना है वो कर ही लेता है। और आई कैन प्राउडली से दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर शाइनिंग इन मीडिया इंडस्ट्री, माय ओन स्टूडेंट्स, सो मेकिंग अस प्राउड।
0: वाकई खुशी होती है। उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक पक्ष आपने हमारे सामने रख दिया, जो लोग आते तो हैं चकाचौंध को देखकर, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो कर गए, जिनका हम नाम ले लेते हैं, उंगली पर हम नाम गिना सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में हम क्या कहें जो अदब नहीं है, सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते? आपको सुख सुविधाएं मिली हुई हैं सीखने के लिए, आपके पास एक रेडियो एफएम है या एक कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, उनको लगता है कि नहीं, छोटा स्टेशन है, बड़े स्टेशन से जाकर मुझे अपनी इंटर्नशिप करनी है, तो वो जो सोच है, उस सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उसके बारे में सर, अगेन मैं आपको एक छोटी सी पंक्ति दूंगा जिसमें सब कुछ है। अश्विनी कुमार अशरफ की पंक्ति है कि शक्लें क्या तू गढ़ने चला है, हुस्न नजर पहले पैदा कर। शक्लें क्या तू गढ़ने चला है, हुस्न नजर पहले पैदा कर, सोच से ढलती है शख्सियत, छोटी बातें मत सोचा कर।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सो लिसनर्स, मुझे लगता है कि इस बात का सार अगर आपने जान लिया, समझ लिया, जो सोच है, जिस सोच के साथ आप चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कोई रोकेगा नहीं और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। तो आप प्रयास करिए, सीखिए, समझिए, और जब आप सीखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित तौर पर हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपके गुरुजन भी आपका नाम लेना चाहेंगे कि वो फला स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया था, आज वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आज उसे लोग मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। चलिए, ये तो पढ़ने पढ़ाने की बात रही, तो सर कोई एक और गाना, क्योंकि आपके पास मिमिक्री का बहुत अथाह भंडार है और आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो कोई और दूसरे सिंगर जिनको आप यहाँ लेकर आना चाहेंगे और उनको हम गाने की तरफ लेकर जाना चाहेंगे?
1: देखिए, मेरा जो रुझान है वो पुराने गानों में बहुत रहा है और
0: बड़े अच्छे
1: एसडी बर्मन साहब, सचिन दा को मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनका एक गाना मैं मिमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: प्लीज प्लीज।

0: मुझे आज की विदा का मर कर भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, ओरे माझी ओरे माझी ओरे माझी।
1: बहुत खूबसूरत, तालियां बनती है सर, तालियां बनती है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपने उनको कॉपी किया। और जब इस तरीके से गानों को जब हम सुनते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, उन गानों में हम खो जाते हैं, वो मांझी, वो गाने के शब्द, वो संगीत आजकल कहीं ना कहीं खो गया है। फिलहाल इस गाने में हम खोने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस गाने को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। सो इस ब्यूटीफुल ट्रैक को आप सुनिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन, मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और सबसे खास बात यह है कि इस दुनिया को अपने आसपास रखते हैं। जब आप म्यूजिक को रखते हैं अपने आसपास, म्यूजिक को जीने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इंसान हमेशा खुश रहेगा ही रहेगा और दूसरों को खुश रखेगा। अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था सर से बात कर। जब हम ऑन एयर बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब आप खुद जज करिए कि कितना अच्छा साक्षात्कार हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। फिलहाल एक ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने की बातें करते हैं, और सच बात तो यह है कि जिंदगी को जब आप जीते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती ही नहीं है। ये सच है कि जिंदगी में तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन एक म्यूजिक की वजह से, खुश मिजाजी की वजह से आप जिंदगी को आगे लेकर जा सकते हैं। कहते ना कि टेंशन बहुत ज्यादा है, हर कोई परेशान है, लेकिन जब आप आत्मबल आपका मजबूत है, सोच आपकी मजबूत है, उड़ान बहुत अच्छी है, तो उसके जो परिणाम है, ये सच है कि सुखद परिणाम आते हैं और कोई भी बीमारी आपको लगती ही नहीं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो सर, ये जो खुश मिजाजी का यूं कहूं कि गुरु मंत्र है आपके पास, आप कैसे खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, तो कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि सर एक गाना गाइए ना, गुनगुनाइए ना, या स्टेज परफॉर्मेंस होने वाली है, अरे पाठक सर को बुलाओ ना, उनकी परफॉर्मेंस हम यहाँ करवाएंगे, कैसा फील होता है उस वक्त?
1: ये अक्सर होता है, और मैं क्या, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा प्रिविलेज महसूस करता है, और अच्छा तब लगता है कि जब सच में लोग उसको पसंद करें और आपको कहीं ना कहीं से तारीफ मिलना, सबको अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि गाना कुछ ऐसा हो कि हमारे जो आज की पीढ़ी के लोग हैं उनको कुछ मैसेज मिले, कुछ मीनिंग हो उसमें, कुछ जीवन हो, क्योंकि जिंदगी के जो सारे रूप हैं वो भारतीय संगीत में मिल जाते हैं। खासतौर से पुराने गानों का जिक्र करें तो उनके लिटरेचर में बड़े मीनिंग हैं, बड़े मायने हैं।
0: सही कर।
1: तो मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ मीनिंग उसमें से अपने लोगों के साथ बांटा जा सके।
0: नाइस। बहुत कठिन काम है किसी को कॉपी करना, क्योंकि मैं भी मिमिक्री करता रहता हूं और गले पे बहुत जोर पड़ता है। एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता। किसी सिंगर को जब आप कॉपी कर रहे हैं तो उनके गाने को हम सुनते हैं, रियाज में उस चीज को हम लेकर आते हैं। चीजें बहुत खूबसूरत तब हो जाती हैं जब आप पेशे से सिंगर हैं, जैसे कि आपने हमें खुद बताया, उस लय को आप पकड़ पा रहे हैं, उस फील के साथ आप गा पा रहे हैं। तो कितना कठिन है किसी को कॉपी करना, मिमिक्री करना?
1: देखिए, पहले तो आपको बेसिक संगीत आना चाहिए अगर आप गाने को कॉपी कर रहे हैं तो।
0: गाने को कर रहे हैं
1: और बेसिक संगीत तो क्लासिकल ही है। और जब आप क्लासिकल जानते हैं तो आप जो भी गा रहे हैं वो सुर होता है। वो बिना सीखा जब व्यक्ति गा रहा होता है तो वो शब्द गाता है, और शब्द सुर नहीं बन पाते, सुरों में शब्द जा सकते हैं।
0: क्या बात?
1: तो ये एक अलग चीज है। दूसरा, उस व्यक्ति या उस कलाकार को आत्मसात करने का प्रयास होता है, तो उसके प्रति आपकी जितनी श्रद्धा है और आपका प्रयास है वही आवाज के रूप में बाहर आता है।
0: क्या बात है, यानी कि एक बहुत बड़ी साधना है। जब आप इस साधना को करते हैं तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होता है, बेहतर हो पाता है। तभी आप किसी को,
1: आप किशोरदा को आपको गाना है तो आपको किशोरदा बनना पड़ेगा,
0: बनना पड़ेगा। तो चलिए, जब आपने यहाँ किशोरदा का जिक्र कर दिया है तो किशोरदा का कोई गाना।
2: चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहां दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का सवेरा लाए। लगती हो भली, हंसती हो कली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले,
1: और वो गगन आप है गगन जी।
0: क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर, और मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। और बहुत कम समय में बहुत कुछ हमने यहाँ जीने की कोशिश की। आपके उस दौर में मैं चला गया, म्यूजिक की बातें हुई, मिमिक्री की बातें हुई, और फाइनली मैं आपसे एक संदेश जरूर जानना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। यूं कहें कि वो गुरु मंत्र क्या होगा कि किस तरीके से इंडस्ट्री में अपने आप को टिका कर रखे, अपने सपनों को हम साकार कर सकें।
1: दो तीन बातें हैं, मैं वापस पोएटिक फॉर्म में ही कहूंगा, जिसको मेरी आदत है, फितरत है, कि मेहनत कर, मेहनत कर, कदम बढ़ाकर चल, मंजिल तेरी राह में होगी आज नहीं तो कल।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: और दूसरा, जो आजकल पढ़ने लिखने की आदत छूट गई है बच्चों की, जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़, जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़, और जितना ज्यादा लिख सके उतना ज्यादा लिख, फिर आज तू जिनको पढ़ रहा कल उनसे आगे दिख।
0: क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत।
1: और आखिरी मैसेज मैं मीडिया के विद्यार्थियों को स्पेशली देना चाहूंगा कि शब्द का संबल समय की धार देखो, शब्द का संबल समय की धार देखो और अपने हाथ की पतवार देखो।
0: क्या बात,
1: नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे।
0: आए है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे, देखना है तो नदी के पार देखो।
0: आए है,
1: देखना है तो नदी के पार देखो।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर मुझे रफली दो लाइनें खुद की ही याद आ जाती है, आपके सामने कुछ नहीं है। खुद पर और खुदा पर यकीन कर, मंजिल जरूर मिलेगी। क्योंकि जब खुद पर विश्वास नहीं है और अपना हौसला बुलंद नहीं है तो कोई हमारी मदद नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ईश्वर भी खुदा भी उन्हीं बंदों की मदद करता है दोस्तों, कि जब आप खुद पर काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और फिर वही कहेंगे कि सुखद परिणाम, वो परिणाम आपके फेवर में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, स्टूडेंट्स को यूं कहूं कि गुरु मंत्र दिया, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सो लिसनर्स, ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में। तो ये कार्यक्रम के बारे में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की जरूरत है। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय, टेक केयर।

0: जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: मैडम यू कैन बी वेरी फंटा।
6: केको डाइट का नाम सुना है? आज से ये सब बंद और वो शुरू।
7: अरे बीबी जैसी पहले थी वैसी फिट हो जा।

0: शिशु के 6 महीने के होने के बाद।
1: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
0: खाने में 1 चम्मच घी या तेल है जरूरी,
1: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
0: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
1: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
4: सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। आज जिस सब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूं वो इशारा करता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि हम बात करेंगे, हिंदी में कहा जाता है साइबर धोखाधड़ी और अंग्रेजी में कहा जाता है साइबर फ्रॉड। इससे कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें? इससे अगर आपने अपने आप को बचा कर रख लिया तो यकीन मानिए कि रात को चादर तान कर आप सो सकते हैं, अदरवाइज रातों की नींद आपकी खराब हो सकती है। इसी के बारे में बातें करेंगे। डिजिटल माध्यमों, जैसे कि बात निकल कर सामने आती है कि इंटरनेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करके की जाने वाली धोखाधड़ी है साइबर फ्रॉड, और जिसका उद्देश्य ये होता है कि पीड़ितों की निजी जानकारी को चुराना या उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है। इसके बारे में डिटेल में और बातें करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरुशादा 90.8 FM। आज का सब्जेक्ट है साइबर फ्रॉड।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि साइबर धोखाधड़ी के प्रति जन जागरूकता अभियान हम चलाते रहें, हम आपको अपडेट करते रहें। यही वजह है कि इस प्रकार के जो घोटाले, इस प्रकार का जो फ्रॉड है, उससे बचने बचाने के लिए हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो बात निकल कर ये सामने आती है कि धोखाधड़ी के मामले बड़े पैमाने पर हमारे सामने आ रहे हैं और भारत सरकार भी अलर्ट है। इसीलिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ मिलकर हम आप तक ये खास बातें पहुंचा रहे हैं। इस साइबर धोखाधड़ियों की जो बढ़ती घटनाएं हैं, उनका असर नागरिकों पर पड़ता है। उनके साथ धोखा होता है, उनके साथ छल होता है, उनके साथ फरेब होता है। और इस बुरे असर से बचने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव किया गया, यानी कि अवेयरनेस एक्टिविटी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और चूंकि रेडियो स्टेशन का जो एक दायरा है, यानी कि आपका हमारा जो एक संबंध है, हम लोगों तक पहुंचते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बीच में पहुंचते हैं, अर्ध शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, तो यानी कि एक ब्रिज का काम हम कर रहे हैं। और यही वजह है कि सुनो शारदा 90.8 FM आपसे कहता है कि इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, इससे आप अपने आप को बचा कर रखें, ताकि आप सुरक्षित रह पाएंगे और आपके रुपए का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरी यानी गगन के साथ। आज मैं बात कर रहा हूं साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर धोखाधड़ी से कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें। और इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले डिटेल निकल कर ये सामने आती है कि जो धोखेबाज लोग हैं, जिस तरीके का काम करते हैं, वो आर्थिक नुकसान आपको पहुंचाते हैं। और कई प्रकार की एक ठगी होती है, जैसे फिशिंग। इसके अंतर्गत होता क्या है कि फर्जी ईमेल या मैसेज भेजकर बैंक विवरण या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी मांगना। दूसरी बात सामने आती है विशिंग और स्मिशिंग, यानी कि फोन कॉल जिसको विशिंग और SMS इसको स्मिशिंग के जरिए बैंक अधिकारी बनकर OTP या कार्ड की जानकारी वो लोग चुराते हैं, वो आपसे मांगते हैं। लेकिन जो भोले भाले लोग होते हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं। और पहचान की चोरी यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की निजी जानकारी जैसे कि नाम आधार नंबर चुराकर उनके नाम पर फर्जी अकाउंट खोलना या लोन लेना। रैंसमवेयर यानी कि कंप्यूटर की फाइलों को लॉक यानी कि एनक्रिप्ट कर देना और उन्हें खोलने के बदले पैसे यानी कि फिरौती की मांग करना। इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये भी एक प्रकार का स्कैम है, यानी कि शेयर ट्रेडिंग या पैसे दोगुने करने का लालच देकर लोगों को निवेश के लिए उकसाना। और हाल ही में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो इस प्रकार की ठगी से आप अपने आप को बचा कर रखें। सिम स्वैप यानी कि धोखे से नया सिम कार्ड निकलवा कर बैंक खातों के OTP प्राप्त करना। तो बहुत सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए, तो आपका फर्ज बनता है कि साइबर ठगी से, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। और ये काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर ये खास बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM के जरिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
1: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
1: सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर धोखाधड़ी के बारे में। इससे बचने के तमाम उपाय हैं, कौन कौन से वो टाइप्स, उसके बारे में मैं बात कर ही चुका हूं। सोशल मीडिया पर नकली विज्ञापन और वीडियो घोटालेबाज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्टिव एड वो लोग चलाते हैं, या यूं कहें कि आकर्षक विज्ञापन वो चलाते हैं। अक्सर मशहूर हस्तियों, सरकारी अधिकारियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री के नकली या एडिट किए हुए वीडियो का इस्तेमाल वो लोग करते हैं और ये वीडियो शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोने में निवेश के लिए पक्के रिटर्न या गुप्त तरीकों का वादा करते हैं और कोई भी सरकारी संस्था या मशहूर हस्ती व्यक्तिगत निवेश की सलाह नहीं देती है और ना ही मुनाफे की गारंटी देती है। तो इस बात का ध्यान रखें, अलर्ट रहें और इस प्रकार की साइबर ठगी से, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। और भी अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, बस यही कहूंगा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। साइबर ठगी से अपने आप को बचा कर रखिए, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, यही उद्देश्य इस प्रोग्राम का। भारत सरकार के साथ मिलकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात निकल कर अब ये सामने आती है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम यानी कि ट्रेंडिंग ग्रुप्स, लोगों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में लोगों को जोड़ा जाता है और वादे किए जाते हैं कि मुफ्त ट्रेनिंग टिप्स, सेबी से रजिस्टर्ड एक्सपर्ट आपको पक्का मुनाफा देने की गारंटी देते हैं। और इन ग्रुप्स के अंदर फर्जी सदस्य बड़े मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स वो लोग शेयर करते हैं। पीड़ितों को धीरे धीरे निवेश करने के लिए राजी किया जाता है। भरोसा बनने में कई दिन या हफ्ते वो लोग लगाते हैं, यानी कि आपके ऊपर काम करते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं। और असलियत ग्रुप के ज्यादातर सदस्य भी इस घोटाले का हिस्सा होते हैं। ये जो जानकारी है भारत सरकार के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस प्रकार की ठगी में ना फंसे, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को दूर रखिए। ऐसे अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
4: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। ऑनलाइन दोस्ती एक इन्वेस्टमेंट ट्रैप बन जाती है दोस्तों। स्कैमर सोशल मीडिया डेटिंग एप्स पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रेगुलर आपसे चैट करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको सामने वाला दोस्त मेरा ही सच्चा दोस्त है, लेकिन इमोशनल भरोसा वो लोग बनाते हैं, भरोसा वो जीतते हैं और उस समय के बाद वो इन्वेस्टमेंट के मौके बताते हैं। और एक अलर्ट मैसेज यानी कि चेतावनी का संकेत ये होता है कि कोई भी ऑनलाइन अजनबी जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जोर दे, वो एक बड़ा रेड फ्लैग है, एक रेड अलर्ट है, वहीं आप अलर्ट हो जाइए। और बात करें तो फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट यानी कि पीड़ितों से, जो लोग पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, उनको हमारी तरफ से अलर्ट मैसेज है कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट प्ले स्टोर के बाहर किसी अनजान लिंक से कोई ऐप इंस्टॉल करने और किसी फर्जी वेबसाइट के जरिए पैसे लगाने के लिए अगर वो कह रहे हैं, आपसे कहा जाता है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म फर्जी मुनाफा, फर्जी अकाउंट बैलेंस और पैसे निकालने के फर्जी विकल्प दिखाते हैं। असल में होता क्या है कि पैसा सीधे धोखेबाजों के पास चला जाता है और जब पीड़ित तो पैसे निकालने की कोशिश करता है तो ऐप काम करना बंद कर देती है और वेबसाइट गायब हो जाती है। टैक्स या फीस के नाम पर और पैसे मांगे जाते हैं। इस स्टेज तक आते आते पैसा पहले ही आपका डूब चुका होता है। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे भैया रामू।
1: हाँ भैया श्यामू।
0: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
1: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
0: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
1: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
0: तो अभी चलो।
2: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, ऐसे धोखेबाजों से अपने आप को बचा कर रखिए। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ठगी से कैसे अपने आप को बचा कर रखें? सुरक्षा से जुड़ी हुई जरूरी सलाह मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सोशल मीडिया विज्ञापनों या अनजान लोगों से मिले निवेश की सलाह पर कभी आप लोग भरोसा ना करें, यकीन बिल्कुल भी ना करें। अनजान लिंक या एपेक फाइलों से कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। आधिकारिक स्रोतों पर सेबी रजिस्ट्रेशन की पुष्टि आप करें। cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें या 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। और फिर डिजिटल अरेस्ट स्कैम की पूरी जानकारी, यानी कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक तरह का धोखा है, धोखाधड़ी है। इसके अंतर्गत बात निकल कर ये सामने आती है कि इसमें जो अपराधी है वो फोन कॉल या वीडियो कॉल पर पुलिस या सरकारी अधिकारी होने का दिखावा करके लोगों को डराने का वो काम करते हैं, और वो पीड़ित को बताते हैं कि उनके खिलाफ कोई गंभीर अपराध दर्ज किया गया है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी या अवैध सिम कार्ड का इस्तेमाल। स्कैमर कहता है कि आपसे पूछताछ की जाएगी, जिसका मतलब है कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते और ना ही कॉल कट कर सकते हैं, और पीड़ितों को कई घंटों या यूं कहें कि कई दिनों तक कॉल पर ही उलझाए रखते हैं ताकि उनके मन में डर और घबराहट पैदा हो जाए। कभी कभी वो वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहनते हैं या असली दिखने के लिए नकली पहचान पत्र या यूं कहें कि आईडी कार्ड्स वो लोग दिखाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि तुरंत पुलिस को सूचित करें, और जो नंबर मैंने आपको बताया 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं या इसके अलावा cybercrime.gov.in पर आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है साइबर फ्रॉड। धोखाधड़ी से अपने आप को बचा कर रखिए। इस प्रकार के जो फ्रॉडर हैं, जो धोखेबाज हैं, वो एक व्यक्ति को अगर पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, या वो पीड़ित व्यक्ति इनके झांसे में आ जाता है, तो उनसे पैसे के लेन देन की जांच करवाने के लिए या मामले को चुप या रफा दफा करने के लिए पैसे की डिमांड करने लगते हैं। और आमतौर पर होता क्या है कि बैंक ट्रांसफर, यूपीआई या क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो रुपया मांगते हैं। पैसे मिलते ही जालसाज लोग गायब हो जाते हैं। और भारत में डिजिटल अरेस्ट यानी कि डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। बस आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और पुलिस कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस कभी भी किसी मामले को बंद करने के लिए पैसे नहीं मांगती। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो तुरंत फोन काट दें। अपनी कोई भी निजी जानकारी आप साझा ना करें। अगर आप किसी साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो फिर मैं दोहराता हूं, 1930 पर आप कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उन लोगों का हथियार ये है, डर उनका हथियार है, जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। तो बहुत सारी अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचा दी। बस फर्ज आपका बनता है कि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। और एक लाइन हमेशा याद आती है जो अक्सर हमने सुनी है, देखी है, पढ़ी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सुनते रहिए ऐसी अपडेट के लिए सुनो शारदा 90.8 FM।

Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइज

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। और जैसा कि आप जानते हैं, बरसात का मौसम है, तो जितना ये मौसम सुहाना होता है, कहीं ना कहीं उतना ही ये बीमारी भी लाता है। तो ऐसे में सतर्क रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए।
1: हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपाली। आप सुन रहे हैं आपका अपना सुनो शारदा 90.8 FM। आज हम आपके साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अपने साथी के साथ। हमारे साथ हैं शशि जी, जो आजे की भूमिका में हैं, और मैं हूँ दीपाली, जो कि टिक्कन भाभी की भूमिका में हैं। आज हम बात करेंगे बाढ़ और उससे संबंधित बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने साथी से कहना चाहूंगी कि आराम से बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो, मगर आपकी तो दाद देनी पड़ेगी कि इतनी बारिश और मुश्किल हालात में भी आपने हमारे श्रोताओं से रूबरू होना नहीं छोड़ा।
0: टिकन भाभी, यही तो हमारे सामुदायिक रेडियो की खासियत है। हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, अपने श्रोताओं को कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उन्हें जानकारी और सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आज बताइए कि आप किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल टिकन भाभी, जब इतनी बारिश और बाढ़ का माहौल है, तो क्यों ना आज बाढ़ और उससे होने वाली बीमारियों पर ही बात की जाए। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, इसके साथ आती हैं कई तरह की फैलने वाली बीमारियां और साथ इन बीमारियों से बढ़ने वाले खर्चे। तो इसलिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है।
1: हाँ बिल्कुल, सावधानी बहुत जरूरी है और आपने बिल्कुल सही कहा। बाढ़ तो खैर बाढ़ है, पर बाढ़ का पानी साफ नहीं होता। उसमें नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और तरह तरह के कीटाणु मिल जाते हैं। यही गंदा पानी जब खाने पीने की चीजों या पीने के पानी में मिल जाता है, तो लोगों को भी बहुत सी बीमारियां अपने चपेट में ले लेती हैं। ऐसे में हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा टिकन भाभी आपने। और जब पानी धीरे धीरे सूखता है, तो जगह जगह गड्ढों में पानी जमा भी हो जाता है।
1: बिल्कुल, और उसी पानी में सबसे तेज मच्छर पनपते हैं। फिर मच्छरों से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, और टिकन भाभी आपने तो देखा ही होगा पिछले साल रामपुर गाँव में क्या हुआ था।
1: हाँ बिल्कुल, मुझे याद है, और मैं कैसे भूल सकती हूँ, वहाँ बाढ़ आई थी।

0: नालियों का गंदा पानी, खेतों की कीचड़ सब मिलकर कुएं और हैंडपंप तक चला गया था। लोग वही पानी पीने लगे, बस वहीं से बीमारियां फैलना शुरू हो गईं। यही हैजा का सबसे बड़ा कारण होता है। कई लोग बीमार पड़ गए। रमेश को गंदा पानी पीने से अचानक उल्टी दस्त होने लग गए। बच्चा इतना कमजोर हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ घबरा गई। पहले उसने सोचा कि घर पर ही इलाज करें, लेकिन हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई।
1: उसके बाद क्या हुआ टिकन भाभी?
0: उसके बाद रमेश को तुरंत गाँव के हेल्थ सेंटर लेकर गए। डॉक्टर साहब ने जांच की, बोले कि रमेश को हैजा है। इस बीमारी से उसके शरीर का पानी बहुत कम हो गया है। डॉक्टर साहब ने उसे ORS का घोल पिलाया और दवा भी दी। अच्छा हुआ कि समय पर इलाज मिल गया और इसलिए रमेश जल्दी ठीक हो।
1: टिकन भाभी, बाढ़ के समय बहुत लोगों को पेट से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे दस्त, उल्टी, पेट दर्द। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है?
0: हाँ, बाढ़ के समय बहुत सावधानी जरूरी है। बाढ़ के दौरान पानी बेहद गंदा हो जाता है। लोग वही पानी पीते हैं, उसी से खाना बना लेते हैं। इससे पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। दस्त, उल्टी, पेट में मरोड़, शरीर में गर्मी के लक्षण हो जाते हैं।
1: तो टिकन भाभी, प्राथमिक सावधानी क्या रखनी चाहिए ऐसे में?
0: बचाव के लिए देखो, सबसे पहले साफ पानी जरूरी है। पानी साफ पिए, ताजा खाना खाएं, हाथ धोना तो कभी भी ना भूलें, खासकर खाने से पहले, और टॉयलेट के बाद हाथ जरूर धोएं। अगर कोई ज्यादा बीमार लगे तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं।
1: बिल्कुल टिकन भाभी, हैजा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी पीना और ताजा भोजन करना। वैसे आजकल गांव में बहुत लोग बुखार से भी परेशान हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि टाइफाइड फैल रहा है। ये टाइफाइड कैसे होता है?
0: हाँ बिल्कुल, मैं आपको इस बारे में आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि टाइफाइड बुखार साल्मोनेला नामक जीवाणु के कारण होता है। यह संक्रमण तब फैलता है जब दूषित पानी या भोजन हमारे शरीर के अंदर जीवाणु के माध्यम से शरीर में पहुंच जाता है। यह दूषण संक्रमित व्यक्ति या बिना लक्षण वाले व्यक्ति के मल से होता है। गंदगी, साफ पानी की कमी, बिना धोए फल सब्जियां या सड़क का खाना खाना भी इसका एक कारण है। यह संक्रमण आम तौर पर फैलता है, खासकर बरसात के बाद या बरसात के दिनों में, और बाढ़ के दिनों में ये बीमारी तेजी के साथ फैलना शुरू हो जाती है।
1: अच्छा, तो टिकन भाभी, इस बीमारी के लक्षण कैसे पहचाने?
0: लक्षण तो बड़े साफ होते हैं। लगातार तेज बुखार, सिर दर्द, पेट में दर्द, कमजोरी लगना, भूख न लगना, कई बार उल्टी भी हो जाती हैं। ये सब दिखें तो समझ लीजिए कि टाइफाइड हो सकता है।
1: तो इस टाइफाइड से बचने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?
0: इस बीमारी से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी। जैसे काम करके घर आने पर साबुन से हाथ धो लें, बच्चे खेल कर आए तो उनके हाथ पैर साफ करें, पानी चाहे कुएं का हो या हैंडपंप का उबाल कर ही पिए। कई बार पानी साफ दिखता है लेकिन अंदर की गंदगी नजर नहीं आती। खाना हमेशा ढक कर रखें बाढ़ के बाद, और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हर तरफ कीटाणु फैले रहते हैं। अगर किसी को लगातार बुखार है, थकान है, पेट दर्द है, तो उसे तुरंत पास के चिकित्सालय ले जाएं और डॉक्टर को दिखाएं।
1: बिल्कुल सही कहा टिकन भाभी आपने। दवा तो डॉक्टर देगा, लेकिन समझदारी और सावधानी हमारे हाथ में है। तो सुन रहे हो ना श्रोताओ, साफ सफाई से रहने से बीमारी पास नहीं भटकेगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो टिकन भाभी, बाढ़ के बाद पड़ोस के गांव में कई लोग बुखार, थकान और पेट की शिकायत लेकर अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस है। ये बीमारी कैसी होती है?
0: देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये सीधे हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। गंदे पानी, दूषित भोजन में मौजूद कीटाणु शरीर में जाकर लीवर को खराब कर देते हैं। यही हेपेटाइटिस का असली कारण है।
1: अच्छा, तो टिकन भाभी, इसके लक्षण कैसे पहचाने?
0: हाँ बिल्कुल, मैं आपको इस बारे में जानकारी दूंगी। अगर किसी को लगातार थकान लगे, हल्का बुखार बना रहे, पेट भारी लगे और खासकर आंखें वे पेशाब पीले रंग के दिखने लग जाएं, तो समझ लीजिए लीवर पर असर हो रहा है। ये हेपेटाइटिस के साफ संकेत हैं। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो हालत बहुत गंभीर हो सकती है।
1: तो क्या टिकन भाभी, हमारे गांव में भी ऐसा कोई मामला हुआ है?
0: हाँ, पास के टोले में हन्नू काका के बेटे को बाढ़ के बाद यही दिक्कत हुई। उसे बार बार बुखार आ रहा था, शरीर में कमजोरी थी, धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी पीली पड़ गई। पहले तो मामूली बुखार समझकर घर पर ही इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर साहब ने बताया कि मन्नू को हेपेटाइटिस ए है, समय पर इलाज मिला तो बच्चा बच जाएगा वरना मुश्किल हो जाएगी।
1: तो टीकन भाभी, इस बीमारी से बचने के लिए जो समुदाय के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए?
0: देखो, सबसे पहले तो साफ पानी पीजिए। अगर किसी में लक्षण दिखे तो खुद के इलाज करने की गलती कभी ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। याद रखिए कि देरी करना जानलेवा हो सकता है।
1: टिकन भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग बुखार और बदन दर्द की शिकायत कर रहे हैं और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है। लोग इसे आसान भाषा में जंगली बुखार भी कहते हैं। ये बीमारी कैसे होती है?
0: देखिए, ये बीमारी बाढ़ के गंदे पानी से फैलती है। उस पानी में जानवरों का मलमूत्र मिला होता है। अगर कोई गंदे पानी में जाता है और उसके शरीर पर कहीं चोट, खरोच या कटा फटा मिलता है तो वहीं से बीमारी अंदर चली जाती है। फिर बुखार, बदन दर्द जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
1: तो भाभी, इस जंगली बुखार के लक्षण कैसे पहचाने?
0: शुरुआत में देखो, तेज बुखार आता है, सिर और मांसपेशियों में दर्द होता है, कई बार तो आंखें भी लाल हो जाती हैं। समय समय पर इलाज न हो तो जंगली बुखार लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा देता है।
1: तो इससे बचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं?
0: देखिए, सावधानी सबसे जरूरी है। बाढ़ के पानी में नंगे पांव ना चलें, अगर जाना ही पड़े तो रबड़ की चप्पल या बूट पहनकर जाएं। शरीर पर कहीं भी कट या चोट हो तो उसे अच्छी तरह ढक कर निकलें। जंगली बुखार के लक्षण दिखें तो घर पर इलाज करने की जगह डॉक्टर के पास जाएं।
1: बिल्कुल, लेकिन टिकन भाभी, बाढ़ के बाद गांव में भी जगह जगह पानी भर जाता है जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा पनप जाते हैं और लोगों को डर रहता है कहीं डेंगू मलेरिया ना फैल जाए, तो इन बीमारियों से लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं?
0: देखिए, जब बाढ़ का पानी गड्ढों, पुराने डिब्बों, कूलर, टंकी में जमा रह जाता है तो वही मच्छर अंडे देते हैं। ऐसे पानी में मच्छर बहुत जल्दी पनपते हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारियां मच्छर के काटने से फैलती हैं। डेंगू वाला व्यक्ति ज्यादा दिन में काटता है जबकि मलेरिया वाला मच्छर रात में काटता है। ये बीमारियां बहुत ही तकलीफ देह होती हैं और अगर समय पर इलाज ना मिले तो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं।
1: तो टीकन भाभी, ये जो दो बीमारियों के बारे में आप बता रही हैं, मलेरिया है, डेंगू है, तो इनके जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, कैसे पहचाने?
0: देखिए, डेंगू में तेज बुखार आता है, शरीर बहुत टूटता है, आंखों में दर्द होता है, कई बार तो खून भी कम हो जाता है। मलेरिया में अचानक जोर की कपकपी लगती है, फिर तेज बुखार आता है, उसके बाद खूब पसीना छूटता है और मरीज बिल्कुल निढाल हो जाता है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो हालात और भी खराब हो जाते हैं।
1: तो टीकन भाभी, डेंगू और मलेरिया से बचाव का सही तरीका कौन सा है?
0: देखिए, बचाव आसान है, थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। टंकी, गमले, कूलर सब एक बार हफ्ते में साफ कीजिए। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और हाँ, ढीले ढाले पूरे कपड़े पहनिए ताकि मच्छर काट कर ना भाग पाए।
1: बिल्कुल टीकन भाभी, बाढ़ के बाद गाँव में बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनके शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल रहे हैं, खुजली हो रही है और कुछ लोगों को तो फफोली भी पड़ गए हैं, क्या ये सब त्वचा की बीमारियां हैं?
0: बिल्कुल, जब बाढ़ आती है तो कई लोग गंदे पानी में चलते हैं, उस पानी में कीचड़, नालियों का गंदा पानी और जानवरों का मलमूत्र तक मिला होता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी के हाथ या पैर पर कट या घाव है और वो गंदे पानी में चला जाए तो कीटाणु उसके शरीर में सीधे प्रवेश कर जाते हैं, वहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है, फिर त्वचा पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं जो कि रोग की तरह दिखाई पड़ते हैं।
1: तो अगर हम इन बीमारियों के लक्षण की बात करें तो वो क्या क्या है?
0: देखो, शुरुआत में हल्की सी खुजली होती है, फिर धीरे धीरे लाल दाने निकल आते हैं, अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया तो फफोले भी बन जाते हैं, उससे पानी निकलने लगता है, कई बार तो जलन, दर्द इतना बढ़ जाता है कि आदमी चैन से बैठ ही नहीं पाता, अगर ध्यान ना दिया जाए तो शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए।
1: तो टीकन भाभी, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जहां लोग इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो वो कैसे अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं?
0: देखो, जितना हो सके गंदे पानी से बचिए। अगर बाहर जाना है तो नंगे पाँव मत जाइए, रबड़ की चप्पल या बूट पहन कर जाइए। अगर गलती से भीग जाएं तो घर आकर साबुन से हाथ पैर धो लीजिए। यदि खुजली, लाल चकत्ते या फफोले दिखें तो घरेलू नुस्खों में वक्त मत गवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, तभी सही इलाज होगा।
1: बिल्कुल टीकन भाभी, बाढ़ के समय कुछ लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है, क्या ये किसी बीमारी का संकेत है?
0: जी बिल्कुल, बाढ़ के दौरान जब लोग एक जगह जैसे स्कूल या पंचायत भवन में इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है। अगर किसी को खांसी, जुखाम या बुखार है तो बीमारी दूसरों तक पहुंच जाती है। ऊपर से गीले कपड़े, लगातार नमी और चारों तरफ गंदगी, ये सब फेफड़ों में बुरा असर डालते हैं। इसी वजह से सांस की दिक्कत बढ़ जाती है और संक्रमण फैलने लगता है।
1: अगर टीकन भाभी इन बीमारियों के लक्षण की हम बात करें तो वो क्या होते हैं?
0: देखिए इनके लक्षण साफ हैं। अगर किसी को बार बार खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है, सीने में जलन है, भारीपन है या बुखार है तो समझ लीजिए मामला हल्का नहीं है।
1: तो इन बीमारियों से बचने के तरीके भी तो होंगे?
0: सबसे पहला तरीका साफ सफाई है। गंदे और गीले कपड़े तुरंत बदल लीजिए। जहाँ रह रहे हो वहाँ खिड़की दरवाजे खोलकर हवा का रास्ता बनाइए। अगर भीड़ में भी हो तो मास्क जरूर पहनिए, खासकर जिनको खांसी जुखाम है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़ा पहनाइए। किसी को सांस लेने में जरा भी दिक्कत लगे तो डॉक्टर को दिखाइए।
1: टीकन भाभी, बाढ़ के समय लोग सिर्फ पानी से नहीं कई और खतरों से भी जूझते हैं। कई बार लोग गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं या फिर किसी जहरीले जीव के काटने से बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे हालत में क्या करना चाहिए?
0: देखिए बाढ़ का पानी बाहर से चाहे जितना शांत दिखे, अंदर से उतना खतरनाक होता है। इसमें गड्ढे होते हैं, टूटी हुई तारें हो सकती हैं, फिसलन हो सकती है और तेज बहाव से आदमी गिर भी सकता है। सबसे बड़ा डर जहरीले सांप, बिच्छू, कीड़े मकौड़ों का है। ये सब पानी के साथ बहकर घरों तक आ जाते हैं।
1: अच्छा भाभी, अगर किसी को सांप या बिच्छू काट ले तो कैसे पहचाने?
0: सांप या बिच्छू काटने के साफ साफ लक्षण दिखते हैं, जैसे काटे गए हिस्से में तेज जलन, सूजन, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना, कई बार तो बेहोशी तक आ जाती है। अगर सांप जहरीला हो तो काटी हुई जगह नीली या काली भी पड़ सकती है। ऐसे हालात में एक एक मिनट बहुत कीमती हो जाता है।
1: तो फिर भाभी, ऐसे वक्त में सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: देखो सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए, घबराहट में ही लोग गलती कर बैठते हैं। काटे गए हिस्से को हिलाइए मत, हिलाने से जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाइए। देसी इलाज, झाड़, फूक, नीम हकीम पर समय बिल्कुल मत गवाइए। जितनी जल्दी डॉक्टर तक पहुंचेंगे उतनी जल्दी इलाज होगा। और हाँ, बचाव के लिए आप कुछ बातों को जरूर कीजिए, जैसे बाढ़ के पानी में नंगे पाँव मत चलिए, रबर की चप्पल या बूट पहनकर निकलिए, रात को सोते वक्त खिड़की दरवाजे बंद रखिए, घर के कोनों और बिस्तरों में नीचे सफाई कर लीजिए ताकि सांप और बिच्छू ना आ सकें।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आपने सुना कि बाढ़ सिर्फ पानी ही नहीं कई खतरनाक बीमारियां भी लाती है, लेकिन अगर हम सतर्क रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें और समय पर इलाज करवाएं तो इन खतरों से बचा जा सकता है। और दोस्तों अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन अनुमति लेने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें,
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त होगा, भारत तभी समृद्ध होगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। तो श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई यहीं पर संपन्न होता है और अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे सेहत संबंधी किसी नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।
2: शारदा 94.5 FM।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी। जैसा कि आप जानते हैं वर्षा की ऋतु चल रही है और इन दिनों में खास करके उल्टी है, दस्त है, इस तरह की बीमारियां अक्सर होती हैं। तो क्या इन बीमारियों के कारण है, किस तरह से आप रोकथाम कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, अगर ये बीमारियां हो जाती हैं तो किस तरह से आप अपना उपचार करवा सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी के लिए हम डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: डॉक्टर साहब, वर्षा ऋतु चल रही है, बारिश का मौसम है, ऐसे में बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को दस्त की और ये उल्टी की समस्या ज़्यादा हो जाती है, तो क्या कारण है इसका?
2: इसका कारण है जैसे बारिश के टाइम पे ज़्यादातर पानी खराब होने की वजह से, आजकल शुद्ध पानी अच्छे से हर कोई नहीं पी पा रहा है, वो शुद्ध पानी ना मिलने की वजह से डायरिया और पाचन पूरा ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से दस्त हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, ये बहुत कॉमन हो गया। दूसरी चीज़ है बारिश के समय में मच्छरों का पैदा होना बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से डेंगू मलेरिया का भी रिस्क बढ़ जाता है। अब ये दो जो मेजर परेशानियाँ हैं इनसे बचने का एक ही तरीका है, सबसे पहले तो कहीं पानी जमा हो रहा है तो उसको जमा ना होने दें, दूसरा खुद के लिए जो पानी पी रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, शुद्ध होना चाहिए, अगर वो शुद्ध नहीं है तो आपको टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, दस्त, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब अगर बाई चांस किसी को हो गया है, सबसे पहले तो खुद इलाज की कोशिश ना करें कि कहीं फार्मासिस्ट के पास चले गए, वहाँ से दवाई ले ली, वो नहीं करना, आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाके सिंपल सा उनसे जो भी वो इलाज दे रहे हैं उसको फॉलो करना है। मेनली ज़्यादातर क्या किया जाता है इसमें, जैसे दस्त हो गया है, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ORS दिया जाता है हमें, बच्चों को, बड़ों को, वो ORS हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए दिया जाता है ताकि उसके अंदर वो मात्रा बनी रहे पानी की। और दूसरा मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए आप अपने आप को पूरे कपड़े पहन के रह सकते हैं, रात के टाइम में मच्छरदानी यूज़ कर सकते हैं, ओडोमॉस यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि कहीं पे भी जमा है पानी उसको हटा दें, ठीक है, साफ़ सफाई। तीसरी चीज़ है बारिश के टाइम में गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती है, तो हम लोग कितना भी साफ़ करते हैं पानी आ जाता है, गंदा हो जाता है, उस जगह को साफ़ करें अपने आसपास के।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने पानी की बात की, खान पान की बात की, तो किस तरह से अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, पानी का कहीं पे भी लोग पी लेते हैं जा करके, या बच्चे पी लेते हैं, तो खासकर इसका कितना प्रभाव पड़ता है?
2: इन दिनों जहाँ तक है घर की जगह अगर बात करी जाए तो घर में पानी शुद्ध ही पीते हैं लोग, शुद्ध ही खाना खान पीन रखते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं जैसे किसी कार्यक्रम में गए या किसी काम से गए हैं, वर्क पे गए हैं, उधर पानी पीने का या तो खुद के साथ लेके जाएं या फिर वहाँ से एक किसी भी ट्रस्टेड सोर्स से पानी पिए। बाहर से जैसे ये साइड में रोड साइड स्टॉल्स होते हैं उनसे अगर पानी लेते हो तो आपको ज़्यादा चांस है कि कंटेमिनेटेड मिलेगा, और यही चीज़ खाने के साथ जाती है। घर का खाना अगर लेके जाते हैं तो आप खाने भी स्वस्थ रहेंगे, बाहर का खाना खासकर बारिश के टाइम पे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है, इसकी वजह से सारी बीमारियाँ अपने आप ही फैल जाती है। अब एक को ये बीमारियाँ ऐसी भी हैं कि अगर एक को हो जाती है तो उसके मलमूत्र के द्वारा, पानी के द्वारा वो किसी और में हो जाती है, तो इसको सिर्फ रोकने का यही तरीका है कि खुद का सामान खुद लेके चले, अगर पॉसिबल नहीं है तो एक अपने भरोसेमंद किसी दुकान से खरीद के पिए, खाए पिए बस।
1: डॉक्टर साहब, जिस तरह से आजकल अपना हम बात करें सूरजपुर की, तो बड़ा घनी आबादी वाला अपना एरिया है और कहीं पर कटे फल बिक रहे हैं, कहीं पर सब्जियां बिक रही हैं, वहीं पर बहुत गंदगी पड़ी है, वहीं वही गंदगी, मक्खियां हैं, मच्छर हैं, गंदगी पर बैठे हैं, वही उन चीज़ों पर बैठे हैं, तो इस दौरान किस तरह की सावधानी रखना ज़रूरी?
2: अब ये तो किया नहीं जा सकता कि ना लिया जाए, हाँ मार्केट जाते ही हैं सभी और सबके लिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि घर ले जाके उसको अच्छे से साफ़ करें। अब ये भी देखा है कि कई लोग उसको साबुन से साफ़ करते हैं, साबुन से साफ़ नहीं करना है, जो फल फ्रूट का, सब्जियों का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो ख़राब हो जाता है, साबुन से साफ़ नहीं करना है, धो के अच्छे से रखना है, अच्छे से पकाओ, अगर उसको अच्छे से पकाओगे तो 99% कीटाणु अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, बस ये ज़रूर रखना है कि उसको साफ़ करना है, अच्छे से पकाना है, उसके बाद खाना है, अध पका, बिना धो के, खुद के हाथ ना धोए हुए ऐसे कभी खाना नहीं खाना है, ना कुछ पीना है।
1: यानी कि साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी को उल्टी लग जाती है, दस्त लग जाते हैं, तो किस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
2: शुरुआत तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर एक दो बार दस्त अगर दिन में तीन बार हो गए, तीन या तीन से ज़्यादा बार, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीन बार तक इंतज़ार करो, आप उससे पहले भी जा सकते हो, लेकिन अगर तीन बार से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको जाना ही है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि कोई मुझे ऐसा ऐसी चीज़ बता दे कि मैं घर पे ही ये चीज़ कर लूँ, तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका है कि आप खाना मोटा अनाज लीजिए उसमें, दूसरा लिक्विड डाइट लीजिए, तीसरी चीज़ ORS, या फिर ORS नहीं है तो नींबू पानी बना के पीजिए दस्त के टाइम पे। अगर ये कर पा रहे हैं तो आपके आधी से ज़्यादा दस्त की कारण ख़त्म हो जाएंगे वहीं पे। लेकिन अगर नहीं हो पा रही आपसे चीज़ें ये, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा देखा, घर पे हैं हम, रात का समय है, ना डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ना कोई आसपास कोई दुकान खुली है, दस्त लग गए हैं, उल्टी लग गई, तो ऐसी जो इमरजेंसी वाली स्थिति में क्या कुछ कर सकते हैं घर पे?
2: इसमें ये कर सकते हैं, अगर उल्टी ऐसा लग रहा है और दस्त ज़्यादा बढ़ गए हैं तो कंडीशन ख़राब है, आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, खुद उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। लोग क्या करते हैं कि पहले के टाइम पे अजवाइन के पानी पी लेते थे, वो गैस के लिए हुआ करता था। लोग आजकल उल्टी के लिए, किसी भी थोड़ी सी दिक्कत होती है उसके लिए, सबके लिए यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर उल्टी वाली कंडीशन आ गई है तो इसका मतलब है कि आपकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। दस्त और उल्टी मैंने बता दिया, दस्त कितने ज़्यादा होने चाहिए, उससे ऊपर अगर जा रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाओ। उल्टी अगर हो रही है तो आपकी कंडीशन सही में ख़राब हो चुकी है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे जो सुनने वालों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
2: बस एक ही संदेश है मेरा कि आसपास को स्वच्छ रखो, स्वस्थ रहो, खाना पीना किसी नवजात को भी देखना है, पकड़ना है, तो वो भी हाथ साफ रहने चाहिए। अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ रखो, जो भी बाहर से चीज़ आ रही है उसको धो के रखो। अगर इतना कर लेते हो आपकी 70% बीमारियां अपने आप ख़त्म हो जाएंगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, और हमारे जो सुनने वाले हैं साफ़ सफाई का विशेषकर ज़रूर ध्यान रखेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मा चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराए। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छान कर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
1: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु,
0: धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले,
1: कुपोषित
2: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
1: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग।
0: तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी RNTCP नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने ₹500 उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
6: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: पर
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों आज

ठीक करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इन पौधों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारे देश में कई औषधीय पौधे काफी मशहूर हैं, जो आप भी जानते होंगे। इनमें अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गूलर का नाम प्रमुख है। किसान मित्रों, बदलते दौर में औषधीय पौधों के महत्व को तेजी से अपनाया जा रहा है। मांग बढ़ने के कारण किसानों के लिए भी इनकी खेती का अवसर तैयार हो गया है। इसीलिए किसान भाई हर्बल पौधों की खेती को अपनी कमाई का एक अच्छा जरिया बना सकते हैं। किसान मित्रों, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड वर्तमान में औषधीय पौधों के सतत विकास, प्रबंधन और संरक्षण में पूरे देश में काम कर रहा है। इसके तहत किसान मित्रों को कई तरह की सहायता दी जा रही है, जिसमें किसानों की भूमि पर प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की खेती करना, पौधों की आपूर्ति के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, आगे के संपर्कों के साथ फसल कटाई के बाद प्रबंधन इकाई की स्थापना करना, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना तैयार करना शामिल है। किसान मित्रों, एक आकलन के मुताबिक देश में हर्बल उत्पादों का बाजार करीब 50,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें सालाना हर्बल पौधों के लिए प्रति एकड़ बुआई का रकबा अभी भी इसके मुकाबले काफी कम है। हालांकि ये सालाना 10% की दर से बढ़ रहा है। किसान मित्रों, परंपरागत खेती की तुलना में हर्बल पौधों की खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ है, क्योंकि इन फसलों को परंपरागत फसलों की अपेक्षा कम खाद पानी और ज्यादा देखरेख की आवश्यकता नहीं पड़ती। औषधीय पौधों का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में किया जाता है, जिसकी मांग देश की आयुर्वेदिक कंपनियों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी रहती है। तो किसान मित्रों, आप भी हर्बल पौधों की खेती करके कम लागत में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही हर्बल पौधों की खेती की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं तरुण वाल्यान।

किसान मित्रों, अभी आप तरुण वाल्यान से ये देशभक्ति रागनी सुन रहे थे। किसान मित्रों, पानी हमारे जीवन के साथ साथ खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। कृषि में पानी का उपयोग व्यापक स्तर पर फसलों की बुआई से लेकर उसकी कटाई से पहले तक, सिंचाई, कीटनाशक छिड़काव और बीज तैयार करने में किया जाता है। लेकिन सिंचाई में सबसे अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी पौधों के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं के संचालन में आवश्यक है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। कृषि में लगभग 80% भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। अगर भूमिगत जल का इसी दर से दोहन होता रहा तो यह एक सूखे जैसी भयानक स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे हमारा जनजीवन और कृषि दोनों ही बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए सिंचाई की नई तकनीकियां ईजाद की गई हैं, जो पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाते हुए फसल की पैदावार भी बढ़ाती हैं, और इन तकनीकों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। तो किसान मित्रों, आजकल कृषि में सिंचाई की कौन कौन सी नई तकनीकियों का उपयोग किया जा रहा है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं पूजा शर्मा।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पूजा शर्मा से ये देशभक्ति रागनी। और अब किसान मित्रों बात करते हैं कि आजकल कृषि में सिंचाई की कौन कौन सी नई नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान मित्रों, आजकल कृषि में सिंचाई की नई तकनीकों में बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई विधि प्रमुख है। इनमें बूंद बूंद सिंचाई विधि प्रमुख रूप से बागवानी, सब्जियों और पंक्ति में बोई गई फसलों में अपनाई जा सकती है। इस विधि द्वारा किसान अपने खेत में पानी के उपयोग को बहुत हद तक कम करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि में पानी के उपयोग की दक्षता 90 से 95% तक मानी गई है और इस विधि द्वारा किसान भाई सतह और उपसतह दोनों तरीकों से फसल में सिंचाई कर सकते हैं। ये विधि पानी को पौधों की जड़ पर बूंद बूंद करके पानी उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार फव्वारा विधि में फसलों को कृत्रिम विधि के पानी के प्रयोग की दक्षता 80 से 85% तक मानी जाती है। ये विधि किसी भी प्रकार की फसलों में अपनाई जा सकती है, जैसे बागवानी, दलहन, तिलहन, अनाज वाली फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का। किसान मित्रों, यहाँ पर एक खास बात आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों विधियां फसलों में लगने वाले कीटनाशक और घास नाशक को मारने वाली दवाइयों के प्रयोग को लगभग 30% तक कम कर देती हैं और फसलों की पैदावार को 20% तक बढ़ा देती हैं। तो आप भी कृषि में आधुनिक सिंचाई की जो नई विधियां हैं उनका उपयोग करें ताकि आपका समय भी बचे, आपका पैसा भी बचे और खेती में लागत कम आए और आपको फायदा ज्यादा हो। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि आजकल कृषि में सिंचाई की कौन कौन सी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। और देखिए, अब समय हो चला है कि आपसे अनुमति ली जाए। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया

0: और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो साधन 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: प्रेमी सज्जन साहबानों, अस्पताल में लड़की स्वस्थ होती चली गई, लेकिन जिन लोगों ने पैसे के बल से अपने केस को बरी करा लिया, आज उन जालिम दुष्टों का आप हाल सुनेंगे। हैरान रह

लड़की थी उर्मिला की ननद, उसको इसी तरह से जलाया गया ससुराल में जैसे उर्मिला को जलाया गया था। मेहरबानों, पति के शरीर में कोल हो जाते हैं, सासू मौत के घाट उतर जाती है,

0: जय हिंद, जय भारत।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओके रा के तुरंत साफ करे नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आसपास कहूं भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो

0: जो ये दर्शाता है कि हम अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर किसी के विरुद्ध अत्याचार करें और ये अत्याचार किसी भी रूप में हो सकता है। हिंसा के कई रूप होते हैं जो अक्सर ज्यादातर महिलाओं के साथ ही देखे जाते हैं।
1: हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरह की हिंसा की शिकार हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि उनके साथ जो भी होता है वो हिंसा ही है और किस तरह की हिंसा है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इन सब चीजों से अपरिचित है।
0: हिंसा का एक दूसरा रूप घरेलू हिंसा होता है और आज एक ऐसी ही कहानी घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई लेकर हम आपके बीच मौजूद हैं। यह कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की है जहां पैसे की लाचारी तो थी ही, लेकिन उन्हें कोई बच्चा भी नहीं था। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे। शादी के बाद 6 साल तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन 7वें साल भगवान की दया से वो महिला गर्भवती हुई और उसे एक बेटी हुई। अपनी इकलौती बेटी को दोनों पति पत्नी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। पैसे की लाचारी होते हुए भी दोनों अपनी बेटी की हर ख्वाहिश, उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। उसे बड़े नाजों से पालते थे। दोनों ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम मेघा रखा। मेघा वक्त के साथ बड़ी होती गई। एक वक्त आया जब मेघा 4 साल की हो गई थी। जब मेघा 4 साल की हो गई थी तब उसके पिता को उसकी पढ़ाई की चिंता होने लगी। कहीं से व्यवस्था करके वो मेघा का दाखिला पास के एक स्कूल में करा देते हैं, जहां पर उनकी अच्छी खासी जान पहचान होती है और जान पहचान होने की वजह से मेघा की फीस में थोड़ी सी माफी हो जाती है। मेघा के पिता किसी भी तरह मेघा की पढ़ाई पूरी करवाना चाहते थे और उन्होंने जैसे तैसे मेघा की पढ़ाई पूरी भी करवा दी। मेघा अपने माँ बाप की इतनी दुलारी थी कि उसे घर का कोई काम ही नहीं आता था, क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसे कोई काम करवाया ही नहीं था। मेघा के पिता की स्थिति जैसी थी उतने में ही वो मेघा को खुश रखते थे, उसकी हर जिद पूरी करते थे। वैसे तो मेघा इतनी सुंदर थी कि उसे जो एक बार देखता वो देखता ही रह जाता। उसकी सुंदरता के चर्चे गांव में भी होते थे। पास के ही गांव का जमींदार, जिसने मेघा की सुंदरता के बारे में सुना और मेघा को देखने उसके घर आया, उसने मेघा को देखा और उसके पिता से मिलकर अपने बेटे के लिए मेघा का हाथ मांगा। मेघा के पिता बहुत खुश हुए क्योंकि मेघा की शादी के लिए खुद रिश्ता उनके घर आया था। वो तो शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन मेघा और उसकी माँ शादी के लिए अभी तैयार नहीं थे। उसके पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की और बताया कि हमारे पास पैसे की कमी है और हम चाहकर भी इतना अच्छा रिश्ता मेघा के लिए नहीं ढूंढ पाते। ये सारी बातें समझाने के बाद मेघा की माँ इस शादी के लिए तैयार हो गई। मेघा और नकुल की शादी भी हो गई और जब मेघा अपने ससुराल गई तो उसने नकुल से कहा कि मैं अभी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। पहले तो नकुल मानने को ही तैयार नहीं था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो मान गया और चुपचाप सो गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। मेघा की सास का व्यवहार मेघा के साथ कुछ ठीक नहीं था। मेघा की सास हमेशा उसे इस बात के ताने देती थी कि तुम्हारे पिता ने हमें एक पैसा नहीं दिया और ना ही तुम्हें कोई सोने की गहने दिए। मेघा ने बताया कि मेरे पिता अभी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप लोग खुद हमारे लिए रिश्ता लेकर गए थे और इसीलिए जल्दी जल्दी में मेरे पिता कुछ दे नहीं पाए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वैसे ये ताने मेघा को हर गलती पर सुनने पड़ते थे। एक दिन मेघा ने अपने पति नकुल से कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मुझे बाहर काम करने दो, मैं भी कोई नौकरी करना चाहती हूँ। नकुल तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि पहले मुझे पिताजी और माताजी से बात करने दो। मेघा ने कहा चलो ठीक है। जब अगली सुबह नकुल ने अपने पिता से मेघा के बारे में बोला तो पिताजी ने नकुल को डांटा और कहा कि अब ये दिन आ गए कि पत्नी के कमाए हुए पैसे इकट्ठा करोगे, क्या तुम इतने पैसे नहीं कमा पाते कि अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा कर सको। उसने पिताजी को समझाने की कोशिश की, कि वो पढ़ी लिखी है और वो कुछ करना चाहती है। पिता ने नकुल को डांटा और डांटते हुए कहा कि हमारे घर की परंपरा यही है कि हमारे घर की महिलाएं घर से बाहर कदम नहीं निकालती।

0: पत्नी अगर कहीं जाना हो तो पति या परिवार की किसी व्यक्ति के साथ ही जाएंगी। हमारे घर की ये परंपरा है कि यहाँ पर सूट नहीं साड़ी पहनना होता है। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती और ना ही कर सकती हैं। नकुल चुप हो गया। वो माँ के पास गया और सारी बातें माँ को बताया। माँ ने भी बिल्कुल यही बोला कि जो तुम्हारी दादी ने किया वही देखकर मैं करती चली आई और अब यही सब तुम्हारी पत्नी को भी करना होगा। नकुल ने पूरी कोशिश की कि मेघा की ख्वाहिशों को वो पूरा करे, मेघा जो करना चाहती है वो करे, लेकिन उसके माँ बाप ने परंपरा का नाम देकर साफ मना कर दिया और ये भी कहा कि अगर तुम्हें ये सब करना है तो तुम हमसे अलग हो जाओ या फिर इसे कहीं और लेकर चले जाओ। विवश होकर नकुल ने भी मेघा को मना कर दिया। मेघा बहुत उदास हुई और उसे ये लगने लगा कि उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। उसने आज तक जो भी पढ़ा लिखा वो अब किसी काम का नहीं। कुछ दिनों तक मेघा शांत रही, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने फिर से अपने सास और ससुर से बात की। उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी कि ये सब हमारे घर की परंपरा नहीं, महिलाओं पर अत्याचार है। हमारे पूर्वजों ने महिलाओं से अपनी मर्जी से जीने का हक छीन लिया है और जिसे आप लोग परंपरा का नाम देकर आगे भी जारी रखना चाहते हैं। मेघा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेघा की सास उस पर चिल्लाई और उसे बुरा भला बोली। इसके बाद उसने नकुल से मेघा को उसके मार की छोड़ाने को कहा। नकुल माँ बाप को कुछ कह नहीं पा रहा था और वो जैसा कह रहे थे वैसा करता जा रहा था। चाहता तो वो भी था कि मेघा पढ़ी लिखी है और उसे अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है, वो जो चाहती है वो करे, लेकिन माँ बाप और समाज ये सब देखकर वो डर रहा था। माँ के कहने मुताबिक वो मेघा को उसके मायके छोड़ाया। जब मेघा अपने मायके चली गई तो बिना डरे उसने एक स्कूल में अध्यापिका के लिए इंटरव्यू दिया और उसमें सेलेक्ट हुई। वो स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाती थी। जब ये बात नकुल और उसके माँ बाप को पता चली तो नकुल के माँ बाप ने मेघा को ससुराल बुलाने से साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि उसने हमारी इज्जत पूरे समाज में उछाल दी है। अब बात इतनी बढ़ गई कि उसके सास ससुर ने तलाक के कागज भी मेघा को भेज दिए। मेघा चूंकि पढ़ी लिखी थी उसने तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर नहीं किए। तलाक का कागज लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस से पूरी बात बताई। पुलिस ने मेघा की पूरी मदद की क्योंकि मेघा चाहती थी कि उसकी सास ससुर को कोई ऐसा आदमी समझाए जिसकी बात उन्हें समझ आ जाए। उसने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि उन्हें कोई सजा ना दे बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश करे। पुलिस वालों ने उन्हें समझाया और इस बात की धमकी भी दी कि अगर मेघा को किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो आप लोगों को सजा हो सकती है। और इस डर से मेघा की सास ससुर संभल गए और मेघा को पूरी आजादी मिल गई।
1: हिंसा करने वाला कोई भी हो सकता है, वो चाहे आपका पति हो, बेटा हो, बहू हो या सास हो। हम आए दिन खबरों में मौत की कहानियाँ पढ़ते रहते हैं जिसमें अलग अलग तरह से महिलाओं के मौत की खबर होती है। इसलिए समझदार बने और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं।
2: आज के इस दौर में भी महिलाओं पे अत्याचार होते रहते हैं जिसे महिलाएं नजरअंदाज करती हैं और सहती रहती हैं, पर उनकी ये सहनशीलता उनके लिए ही हानिकारक साबित होती है। जब आए दिन हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जिसमें किसी की हत्या हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया या फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं, तो आज ही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाइए।
3: अत्याचार बहुत हुआ देवी,
2: तुम अब सहना छोड़ दो,
3: तुम में हुनर बहुत है,
2: तुम खुद को कमजोर कहना छोड़ दो।
3: और यही अपील स्मार्ट इंच यो और रेडियो प्रज्ञा आपसे कर रहा है।
0: वैसे ये कहानी तो थी मेघा की, लेकिन अभी भी हमारे समाज में मेघा की तरह ही बहुत सारी और भी महिलाएं हैं जिनके साथ आए दिन कोई ना कोई हिंसा होता ही रहता है।
1: हिंसा का शब्द सुनते ही हमारे मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। हिंसा का शिकार कोई भी हो सकता है, वो चाहे किसी भी वर्ग का पुरुष हो या स्त्री हो।
0: तो अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई भी हिंसा हो रहा है तो वन स्टॉप सेंटर या महिला थाना, महिला एवं बाल विकास अधिकारी या फिर महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 यानी 1090 या 112 की मदद लेकर आप इस तरह की हिंसा को रोक सकती हैं। क्योंकि अगर आप सुनेंगी नहीं, समझेंगी नहीं, तो अपनी चुप्पी को तोड़कर कभी भी आप हिंसा को नो नहीं बोल पाएंगी। इसलिए जरूरी है सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो।
1: अगर आपके साथ हुई हिंसा का कोई भी सबूत आपके पास है तो उसे भी आप पुलिस से जरूर साझा करें। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक कानून बनाया गया है जिसके तहत आप अपने साथ हो रहे हिंसा की शिकायत कर सकती हैं। ये अधिनियम घर में मौजूद महिलाओं जैसे पत्नी या फिर साथ रह रहे जोड़ीदार, बहनों, माताओं, बेटियों, पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों से रक्षा करता है। इस अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार करने वाले को कोई दंड या जुर्माना नहीं लगाया जाता, लेकिन अदालत द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करने वाले को दंडित जरूर किया जा सकता है। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागवान है इस कायनात की। हमें हिंसा को सहकर उसे बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमें हिंसा पर रोक लगाना है और ये कहना है कि सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो।
0: और हम महिलाओं को अपना अधिकार समझने की जरूरत है कि हमारा अधिकार क्या है। अपने अधिकार, अपने हक किसी को छीनने ना दें। अपने अधिकार की लड़ाई आप खुद लड़ें। और कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की मदद की आवश्यकता है तो आप महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 या 112 यानी 112 पर कॉल करके मदद भी ले सकती है, जहां आपके परिचय को गोपनीय रखा जाता है और आपकी मदद भी पूरी तरीके से की जाती है। और अगर आपको मेघा की ये स्टोरी पसंद आई है और अगर आपको भी ये लगता है कि इस कहानी से आप दूसरों की या खुद की मदद कर सकती हैं, तो जरूर करें।
1: उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई कहानी के माध्यम से ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी।
0: ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा था हिंसा को नो। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, तो दीजिए हमें जाने की इजाजत। मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक इंतजार हमारा। सुनते रहिए आप
4: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जब टीचर हमारी क्लास में अटेंडेंस लेते हैं और अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो जब हम उसके बारे में पता करते हैं और अगर हमें पता चलता है कि उस बच्चे को बुखार है तो फिर हम तुरंत आशा से संपर्क करते हैं जो उसी गांव की होती हैं, वो आती हैं और हम उन्हें उन बच्चों के बारे में बताते हैं कि आप जाकर देखिए। फिर वो उनके घर जाती हैं, उनकी कंडीशन देखती हैं और फिर जैसा होता है वैसा वो उनको रेफर करती हैं। बच्चों को निबंध के माध्यम से, भाषण शैली के माध्यम से जागरूक करते हैं और बच्चों को पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से भी जागरूक करते हैं और बच्चे उसे अपने घर जाकर के अपने अभिभावकों को बताते हैं।
1: मेरी बेटी स्कूल से जो सब सीख के आती है वो सब हम घर पे पालन करते हैं, जैसे कि हाथ धोना, गड्ढे में पानी इकट्ठा न रहने देना, मच्छरदानी लगाकर सोते हैं क्योंकि हमें मच्छर काट लेगा तो बुखार हो जाएगा। और बच्चे जो स्कूल से सीख के आते हैं वो इसे सब बच्चे अपने घर पे अच्छे से पालन करें।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
1: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
0: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
1: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
0: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
2: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, इसलिए बहुत जरूरी है

0: कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।

जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार
2: और विमलेश का भी नमस्कार। श्रोताओं, आप लोगों द्वारा भेजे गए पत्र और संदेश सचमुच हमारा उत्साह बहुत बढ़ाते हैं।
1: और श्रोताओं, इसलिए हम और अधिक प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम को कैसे और अधिक रोचक बनाया जाए।
2: तो इसी प्रकार से हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए और
1: संदेश के साथ साथ सुविचार भी भेजते रहिए। तो आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
2: हमारा पहला प्रश्न था,
1: हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, उनका नाम और उपनाम क्या है?
2: इसका उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। उनका असली नाम था श्री धनपत राय श्रीवास्तव।
1: और श्रोताओं, अब हमारा दूसरा सवाल था, मोहनदास करमचंद गांधी को दो उपाधियां मिली थी, राष्ट्रपिता और महात्मा, ये नाम किसने दिए थे?
2: तो साथियों, इसका सही उत्तर है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा की उपाधि दी थी महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
1: जी, हमारा तीसरा प्रश्न था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने लिखा था?
2: तो इसका सही जवाब है, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख लिखा था।
1: और अब हमारा चौथा प्रश्न था कि किस राज्य या संघ राज्य को फलों की टोकरी कहा जाता है? आपके विकल्प थे उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, गोवा और हिमाचल प्रदेश।
2: तो साथियों, इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश।
1: जी हाँ, हिमाचल प्रदेश को फलों की टोकरी भी कहा जाता है। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और सरदार का विशेषण किसने दिया था?
2: तो इसका सही उत्तर है साथियों, महात्मा गांधी जी ने बारडोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार और लौह पुरुष की उपाधि दी थी।
1: तो श्रोताओं, आइए, ये तो हुए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो आइए अब सुनते हैं आज का सुविचार।
2: तो आज का सुविचार है, परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा।
1: परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना होगा। और ये सुविचार हमें भेजा था ग्राम खकल, तहसील कोंच, जिला जालौन, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से, ठाकुर दीपक सिंह गुर्जर ने।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।
1: और श्रोताओं, हमें संदेश जिन श्रोताओं ने भेजा था उनके नाम अब इस प्रकार से हैं, ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, श्रीमती कल्पना चंसौलिया,
2: राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: यवतमाल विदर्भ यानी महाराष्ट्र से, संतोष खड से और विनोद खड से,
2: करगी रोड, कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से, एकता गुप्ता, उषा, ज्ञानचंद्र गुप्ता, आस्था, अभय, जयदीप गुप्ता,
1: और अपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान, अबान और परिवार के अन्य सभी सदस्य गण।
2: तो आइए अब सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न। प्रश्न है,
1: संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है?
2: प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं,
1: संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है?
2: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे चिर परिचित नंबर 8800440559 पर।
1: और हमारा ईमेल भी याद रखें, यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप हमारे प्रश्नों के उत्तर या अपना संदेश भेज सकते हैं।
2: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है लंका।

0: अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी, क्रोध से बिलबिलाता हुआ।
1: लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं, अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा।
0: लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिया, मार काट मच गई, जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंघ, यूपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्ध नाद हुआ।

0: अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला। फुक्कारते हुए हन कुचले सांप की तरह वो जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए, रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम, उनके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए ये देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वो बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने ये देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा,
1: रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी। तेरा अंत निश्चित है।
0: उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वो सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े।

राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी, थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गईं, पलकें झुकना भूल गईं। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया। घोड़े और रथ बदलने राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। ये पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वो रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी।

0: उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका का विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वो अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था। शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा।
1: ओ बंधु,
2: मित्र विभीषण, शोक मत करो। रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मित्र, मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो।
1: प्रभु,
0: राम ने एक एक वानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया।
2: हनुमान प्रभु, ये संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है।
3: जैसी आज्ञा प्रभु।
2: उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए
3: प्रभु।
0: विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए। उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जटित। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा,
3: प्रभु, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई।
2: हनुमान,
3: वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं।
2: सीते,
0: तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा,
2: लंकापति
3: प्रभु,
2: सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहां लाने की व्यवस्था की जाए।
3: जो आज्ञा।
0: वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी।

दृढ़ता में एक वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल।
1: आइए अब सुनते हैं दूसरा कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम से पहले एक खास बात।
2: श्रोताओं, आप जानते हैं कि भारत अब चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 की सफलता से सारे विश्व में भारत की सराहना हो रही है।
1: तो इसी क्रम में आइए सुनते हैं चंद्रमा पर ही एक कार्यक्रम, यानी एक विज्ञान गीत।
2: और इस विज्ञान गीत का शीर्षक है चंदा की छुट्टी।

0: तो श्रोताओ, कैसा लगा ये कार्यक्रम चंदा की छुट्टी?
1: जरूर अच्छा लगा होगा, है ना? तो अब हमारे प्रसारण का आज का समय यही समाप्त होता है। तो अजीत
0: और विमलेश को
1: तकनीकी टीम
0: तनु,
1: जगबंधु,
0: मीनाक्षी,
1: कुसुमलता,
0: सौम्या,
1: विकास
0: और मयंक के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-6666। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन बी

0: 12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं, तो इसीलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर यह तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है, इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM, सुनो शारदा।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

सुनो शारदा 90.8 FM। जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी। कौन करता काम? श्रोताओ, हवाओं और पानी का चक्र जीवन को अपने विभिन्न रूपों में बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। कैसे हवा अपना काम करती है और महासागर अपना, कैसे धरती में ऊष्मा का संचरण होता है, क्या धरती वाकई में एक चुंबक है, इन्हीं सब विषयों में उलझे मानव के सवालों का जवाब देगी हमारी आज की कड़ी। शीर्षक है

0: मानव मानव
1: जी भैया
0: मानव जरा पानी देना
1: अभी ना है भैया
2: सृष्टि पापा विनोद अंकल को लेकर कब तक आने को कह गए हैं
3: 8 बजे की ट्रेन थी 9 बजे तक आ जाना चाहिए अब ये विनोद अंकल कौन है अरे विनोद अंकल पापा के बचपन के दोस्त हैं आज रात को कोई लेक्चर देने विदेश जा रहे हैं इसलिए दिल्ली आ रहे हैं और रात की फ्लाइट से जाएंगे
1: पर वो विदेश में क्यों लेक्चर देंगे
2: अरे मानव हमारे विनोद अंकल राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्था गोवा में वैज्ञानिक हैं और आजकल महासागरों के बढ़ते तापमान का धरती पर क्या प्रभाव है इस पर काम कर रहे हैं
1: तो फिर वो बाहर क्यों जा रहे हैं
2: अरे भाई अपने काम को पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों से बांटने जा रहे हैं कुछ उन्हें बताएंगे और कुछ उनसे जानेंगे
1: अच्छा
2: एक मिनट मानव मैंने तुझसे पानी मांगा था तू लाए नहीं तक
1: वो
2: चल
1: वो,
2: चल जा
1: वो मैं तो भूल ही गया भैया अभी अभी अभी लेके
2: आया
1: भूल गया क्या भैया ये मानव घर का कुछ भी काम नहीं करता
4: ठीक कहा सृष्टि इसे कब से कह रही हूँ जरा दुकान से जाकर चीनी लेकर आ मेहमान आ रहे हैं पर ये है कि टालता ही जा रहा है ले विवे पानी
2: लाओ पर मम्मी ये बात बहुत गलत है मैंने मानव को पानी लाने को कहा था आप क्यों ले आई आप ही इसे बिगाड़ रहे हो घर का कोई काम नहीं करता ये
4: अरे कोई आया है
1: अरे लगता है पापा आ गए हाँ देखो बेटा
2: मम्मी एक काम नहीं करता
5: अरे आंटी आप नमस्ते
1: छोड़ दो
5: मम्मी मल्होत्रा आंटी आई है
1: ओ अरे भाभी जी आई आई है
6: वसुधा थोड़ी चीनी चाहिए थी
4: लो आप बैठिए ना मैं विवेक ए विवेक बेटा जरा जाके चीनी तो लेकर आना फटाफट
6: जा वसुधा घर में नहीं है तुम रहने दो मुझे तो बस थोड़ी सी चाय के लिए चाहिए थी ठीक है मैं मिसेस गुप्ता के यहाँ से ले लेती हूँ
4: नहीं नहीं नहीं नहीं ये सामने है तो दुकान है विवेक जाएगा फट से ले आएगा जाओ ना विवेक जाओ ना अब
2: जा रहा हूँ
1: हाँ हाँ विवेक भैया ले आएंगे पर ये मानव नहीं लाएगा कुछ काम नहीं करता ये
6: अभी बच्चा है पुत्र बड़ा होके तो काम करना ही है ना
1: नहीं आंटी ये तो घर पर पानी भी खुद नहीं लेता बड़ा होगा तो सभी को परेशान करेगा काम की आदत तो बचपन से ही होनी चाहिए
6: ये बात भी ठीक कही पुत्र और वैसे भी घर के छोटे मोटे काम तो सभी को करने चाहिए
4: ठीक ही कहा आपने मिसेस

0: लोथरा, पर मानव है कि सुनता ही तो नहीं।
1: पर ये मानव अब गया कहाँ?
2: मैं यहाँ हूँ दीदी, आपकी बातें सुन रहा हूँ।
0: अरे सुन रहा है या कुछ सीख भी रहा है?
3: मम्मी
0: हाँ,
3: ये लो चीनी।
0: ला बेटा।
4: वसुधा, तुम्हारे घर कोई आ रहा है क्या?
0: हाँ, इनके दोस्त है ना विनोद जी, वो आ रहे हैं, वैज्ञानिक हैं वो। लीजिए मिसेस मल्होत्रा, ये लीजिए एक कटोरी चीनी। अरे शायद आ भी गए, देखती हूँ।
5: नमस्ते भाभी।
0: नमस्कार।
6: सूर्य प्रकाश भाई, ये तो विवेक है।
7: हाँ, ये बड़ा वाला है। हाँ,
6: और ये सृष्टि है,
7: ये भी है।
6: और ये छुटकू सा मानव है।
7: विनोद, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। और ये हमारी पड़ोसन मिसेस मल्होत्रा।
4: भाई नमस्ते जी।
6: जी नमस्ते।
4: बस चीनी लेने आई थी, चलती
0: हूँ। अरे मिसेस मल्होत्रा बैठिए ना, चाय बस तैयार है।
6: हाँ वसुधा भाभी, चाय की सच में जरूरत है।
7: सही बात है, बहुत है।
0: मानव, जरा पापा और अंकल को पानी तो दे दो।
1: अरे मम्मी, मानव कहाँ लाएगा, मैं लाती हूँ।
6: अरे मानव, जाओ ना बेटे, मम्मी की मदद करो ना जाकर।
1: जी अंकल।
7: अंकल, आपका लेक्चर गर्म होते महासागरों पर है ना?
6: हाँ विवेक बेटा, असल में कॉन्फ्रेंस पूरी गर्माती धरती को ही लेकर है।
4: ओ जी, ये सब गर्म और ठंडा कैसे हो जाता है जी?
6: देखिए भाभी जी, इसमें कई सारे बल मिलकर काम करते हैं। महासागर, वायुमंडल, भूमि, इन सब में ऊष्मा का संचरण एक बहुत ही रोचक विषय है।
0: लीजिए भाई साहब, बातें तो चलती रहेंगी, चाय और बिस्किट।
6: अरे वाह,
0: नमकीन लाना तो मैं भूल ही गई। मानव
1: जी,
0: जरा जाके अंदर से नमकीन लेकर आए फटाफट। जा,
1: मैं लाती हूँ मम्मी।
6: भाई मानव जी, लोग आपको काम के लिए कहते हैं और उसे पूरा आपकी सृष्टि दीदी करती हैं, ऐसा क्यों है भाई, ये बताओ।
1: नहीं अंकल, वो ऐसा नहीं है।
6: देखो मानव, जैसा अभी मल्होत्रा भाभी पूछ रही थी कि ये धरती में अलग अलग मौसम, जलवायु, गर्मी सर्दी, ये सब कैसे होता है, तो ये तुम जानोगे?
1: हाँ अंकल जरूर। वैसे आपने कहा था कि कई सारे बल काम करते हैं।
6: हाँ बेटा, और ये बल लगातार काम करते हैं जिस कारण इस धरती पर जीवन बसता है।
1: लीजिए अंकल नमकीन।
6: शुक्रिया बेटा। अब मैं अकेला ही थोड़ी खाऊंगा। सूर्य प्रकाश।
1: विवेक भैया मुझे भी दो ना, थोड़ा सा खाइए ना आंटी।
7: खाने के मामले में तो तुम लो।
6: सूर्य प्रकाश, बच्चों को ऐसा नहीं कहा गया।
7: अरे नहीं, ये तो देख रहे हो कितना मोटा हो रहा।
6: अरे चाय पीजिए ना।
0: अरे बाबू जी, आप भी लीजिए ना।
4: हाँ लेती हूँ।
6: हाँ तो मिसेस मल्होत्रा जी, देखिए सब जानते ही हैं कि सूरज से आने वाली ऊष्मा ही महासागरों, वायुमंडल, भूमि आदि में गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है।
1: हाँ अंकल, ये तो हमें भी लगता है क्या मानव, ऐसा ही है।
6: ठीक कहा सृष्टि। अच्छा, पर क्या तुम बता सकती हो कि सूरज से आने वाली ऊष्मा किस किस प्रकार से महासागर और वायुमंडल में हस्तांतरित होती है?
1: अंकल मुझे थोड़ा बहुत पता है, पर आप बताइए ना, ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा।
7: वैसे अंकल मैं बताता हूँ, मेरे हिसाब से ऊर्जा हस्तांतरण के तीन तरीके हैं। पहला रेडिएशन यानी विकिरण, दूसरा कंडक्शन यानी चालन, और तीसरा कन्वेक्शन यानी संवाहन।
6: इसी बात पर तो एक बिस्किट और ले लेना। अच्छा सूर्य प्रकाश, अगर मैं अच्छी बात बताऊंगा तो मुझे चाय पीने के लिए कहोगे? वैसे एक बात कहूं कि विवेक ने बहुत सही बात कही है। तुमने बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश शाबाश।
4: हो जी, हमारी कॉलोनी का सबसे होशियार लड़का है विवेक
1: गुप्ता। क्या बात है
6: जी। तो रेडिएशन यानी विकिरण के कारण ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा पहुंचती है।
7: मानव पता है, माइक्रोवेव ओवन में जो खाना गर्म होता है वो इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी माइक्रोवेव द्वारा ही होता है, पता है तुझे?
1: अच्छा, तभी बड़ी जल्दी खाना गर्म हो जाता है।
7: और तुम जल्दी से खा भी सकते हो। और मानव, ये जो तुम रिमोट से टीवी पर चैनल बदलते रहते हो, वो सब भी इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण ही होता है।
1: और पापा, ये रेडियो, बिना तार का फोन, ये सब भी तो इन्हीं तरंगों से चलते हैं ना? यानी ये धरती भी सूरज से आने वाली इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों से ही गर्म होती है ना अंकल?
6: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेटा। असल में सूरज जैसे गर्म पिंड विकिरण अधिक तीव्रता से उत्सर्जित करते हैं और ज्यादातर ये छोटी तरंग दैर्ध्य वाली ही तरंगे होती हैं। और जब ये तरंगे ठंडी धरती से टकराती हैं तो धरती लंबी तरंग दैर्ध्य की तरंगे वापस भेजती है।
3: हाँ, यानी धरती तीव्र ऊर्जा वाली तरंगे सोख कर हल्की तरंगे वापस छोड़ती है। एग्जैक्टली विनोद ना?
6: कुछ कुछ ऐसा ही है सूर्य प्रकाश।
1: अंकल, कंडक्शन की प्रक्रिया तो तब होती है ना जब कोई गर्म पेंट किसी ठंडे पेंट के संपर्क में आता है। जैसे मम्मी गर्म कुकर को स्टील के स्टैंड पर रखती है तो वो भी गर्म हो जाता है।
6: बहुत बढ़िया सृष्टि, तुम तो बहुत कुछ जानती हो बेटा। देखो तुम करते हो, पता है तुम्हारी बेटी है।
3: थैंक यू यार।
6: देखो बेटा, कंडक्शन में तापन की दर यानी गर्म करने की दर तापमान के अंतर के अनुसार बढ़ती जाती है। मतलब जितना तापमान में अंतर उतना ही ऊष्मा का हस्तांतरण।
7: अब अंकल, ये तापन की दर पदार्थ के प्रकार से भी प्रभावित होती है ना?
6: हाँ बेटा, अब जैसे धातुओं में कंडक्शन अन्य पदार्थ जैसे लकड़ी, सख्त प्लास्टिक आदि की तुलना में तीव्र होता है। यानी कुछ पदार्थ बढ़िया कंडक्टर होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं।
1: हाँ, जैसे हवा ताप का एक बुरा कंडक्टर है।
6: बिल्कुल सही सृष्टि।
1: पर अंकल, फिर हवा में ऊष्मा कैसे आती जाती है?
7: मानव, इसमें काम आती है तीसरी प्रक्रिया यानी कन्वेक्शन, मतलब संवहन।
1: अरे मानव, संवहन इस्लाम अंकल ने बताया भी था, तू भूल गया? नहीं नहीं दीदी, मुझे याद है।
4: ओए तो पुत्र, विनोद अंकल को भी तो बताओ ना।
1: जी अंकल, कन्वेक्शन यानी संवहन में पानी या हवा गर्म कर ऊपर उठती है और उसकी जगह ठंडा पानी या ठंडी हवा ले लेती है।
6: अच्छा, तो तुम्हें प्रोफेसर शम्सुल इस्लाम पढ़ा कर गए हैं।
1: जी।
6: वैसे शाबाश बेटा, सही कहा तुमने। संवहन प्रक्रिया द्रव्य और गैसों में देखी जाती है। इस प्रक्रिया में तरल पदार्थ और गैस जब गर्म होते हैं ना, तो वहां से उनकी सघनता कम हो जाती है।
1: हाँ, जैसे भूमध्य रेखा पर सूरज की गर्मी से होता है।
6: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फिर ये गर्म तरल पदार्थ ऊपर उठता है और उसकी जगह ठंडा तरल ले लेता है। बस यही प्रक्रिया चलती रहती है और उसी से बनता है महासागरों और वायुमंडल का संचरण।
1: हाँ अंकल, ये तो हमें भी पता है कि भूमध्य रेखा से महासागरों का पानी और हवाएं गर्म होकर ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाती है।
6: वाह वाह बेटा मानव, बहुत बढ़िया, तुम्हें भी काफी कुछ पता है। वैसे मिसेस मल्होत्रा।
4: हाँ जी।
6: आप मानव के बारे में नहीं कहेंगी जो आप विवेक के बारे में कुछ कह रही थी?
4: ओ जी, ये भी हमारे कॉलोनी का सबसे होशियार पुत्र है।
6: वैसे मानव बेटा
1: जी,
6: तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हें पृथ्वी की प्रकृति के परिवार के इन छोटे बड़े बलों के बारे में पता है। ये रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन आदि सब इस प्रकृति के परिवार के सदस्य हैं, जो लगातार काम करते रहते हैं और कभी भी काम से जी नहीं चुराते। हाँ।
0: और अगर ये काम से जी चुरा लें तो हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। हाँ
3: बिल्कुल। हाय हाय हाय वसुधा, क्या बात कही है तुमने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
6: वैसे यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा, बच्चे तो बच्चे मारे माँ।
4: ओ जी, मैं चलती हूँ। असल में मैं भी अपने परिवार की एक सदस्य हूँ।
3: अच्छा,
4: उसी परिवार का बल हूँ। मेरे बगैर वो हैप्पी के पापा है ना जी, चाय के लिए तरस रहे होंगे।
3: ओके, हाँ।
4: मैं भी जाके अपना काम करती हूँ जी। नमस्ते।
3: नमस्ते, नमस्ते।
6: ये अचानक,
3: कोई बात नहीं विनोद, तुम्हारे इस लेक्चर से किसी को अपना परिवार और अपनी जिम्मेदारी याद तो आई।
6: ये क्या तुम लोग
0: कुछ भी बोलते हैं।
6: अच्छा सूर्य प्रकाश, ये छोटे बड़े बल जो किसी ना किसी प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं, जिससे जीवन चलता रहता है, ये एक परिवार की तरह ही तो कार्य करते हैं, जिससे इस नीले ग्रह पर जीवन चलता रहता है।
3: हाँ बिल्कुल सही बोल रहे।
1: पर अंकल, इससे जीवन कैसे चलता है?
7: अरे मानव, महासागरों का चक्र, हवाओं का चक्र, जो पोषक तत्व इधर से उधर पहुंचाते हैं, धरती पर वर्षा, हिमपात, जलवायु और मौसम बनाता है। वो इन बलों के कारण ही तो संभव है।
6: हाँ भाई, ये बल चाहे कन्वेक्शन हो, कंडक्शन हो या रेडिएशन हो, ये सब जो ऊर्जा यहाँ से वहां ले जाते हैं, इसी से तो धरती पर जीवन बना रहता है।
7: इन प्रक्रियाओं के कारण ही तो ये नीला ग्रह जीवन भरा ग्रह है। एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का स्थानांतरण, सभी मौसमी चक्रों, जलवायु चक्रों आदि को ताकत देने वाले इंजन, ये सभी प्रक्रियाएं ही तो हैं।
1: भैया, सभी प्रक्रियाएं हैं या बल? बल क्या है? ताकत, एक ऐसी ताकत जो इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनती है।
6: शाबाश सृष्टि। हाँ, और इन सभी प्रक्रियाओं से दाब में फर्क आता है, सघनता में फर्क आता है, जिस कारण पूरा तंत्र गतिमान रहता है।
7: बिल्कुल,
0: सच में ये सारी बातें कमाल की
6: होते हैं।
1: अंकल, ये सूरज की किरणें जब धरती से टकराती हैं, तो रास्ते में भी तो कुछ ऊष्मा खोती है ना?
6: बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर वायुमंडल कुछ ऊष्मा ना सोखे या वापस ना भेजे, तो ये धरती तो तप कर भट्टी जैसी हो जाएगी।
7: और अंकल, सूरज की किरणों से वायुमंडल ज्यादा गर्म तो नहीं होता?
6: हाँ विवेक, पर ज्यादातर पराबैंगनी किरणें ऊपरी परतों द्वारा सोख ली जाती हैं और उन्हें ऊष्मा में बदल दिया जाता है।
1: ये ज्यादातर ओजोन की परत में होता है।
6: बिल्कुल ठीक। असल में वायुमंडल की अलग अलग परतें होती हैं, कुछ गर्म होती हैं तो कुछ नहीं। ज्यादातर ऊष्मा वायुमंडल की नीचे की परतों में बादलों और जल वाष्प द्वारा सोखी जाती है। इसके साथ साथ इन किरणों का अधिकतम बिखराव निचले और ज्यादा सघन वायुमंडल में होता है, जहाँ ज्यादा धूल और जलवाष्प होता है।
7: और इन्हीं में से कुछ बिखरी तरंगे धरती की ओर मुड़ जाती है ना अंकल?
6: हाँ विवेक, पर ज्यादातर अंतरिक्ष में ही खो जाती हैं।
7: अच्छा,
6: अंतरिक्ष से जो धरती की तस्वीरें ली गई हैं, उनसे पता चला है कि किसी भी पल धरती की आधी सतह बादलों से ढकी रहती है।
7: यानी कुछ मात्रा में आने वाली ऊर्जा को सोखने के साथ ये बादल काफी मात्रा में ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं।
6: हाँ बिल्कुल सही समझे तुम। और ये परावर्तित ऊर्जा जो थोड़ी बहुत धरती तक भी पहुंचती है, उसे क्लाउड अल्बिडो भी कहते हैं।
7: अच्छा,
6: और जब धरती की सतह से ऊर्जा परावर्तित होकर इसमें जुड़ जाती है, तो इसे टोटल प्लैनेटरी अल्बिडो कहा जाता है।
3: भाई विनोद, ये धरती से ऊर्जा का परावर्तन तो बर्फ, हिम आदि से ज्यादा होता होगा।
6: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने सूर्य प्रकाश।
1: पर बर्फ या हिम से ऐसा क्यों ज्यादा होता है? अरे मानव, सफेद चीज किरणों को अधिक परावर्तित करती है, इसलिए।
2: अच्छा
6: हाँ, परंतु जब सूरज सीधा महासागरों के ऊपर होता है, तो ये ऊर्जा का परावर्तन कम होता है।
7: तो अंकल, जैसा आपने कहा था कि धरती लंबी तरंग दैर्ध्य किरणों को पुनः परावर्तित करती है, तो पानी और वायुमंडल ज्यादातर विकिरण से ही गर्म होता है?
6: हाँ बेटा विवेक, थोड़ा बहुत कंडक्शन होता है और सतह की कुछ हवाएं कन्वेक्शन से भी ऊपर उठती हैं।
7: अच्छा,
6: परंतु मुख्य प्रक्रिया रेडिएशन यानी विकिरण ही है।
3: हाँ, और भाई ये जो लंबी वेवलेंथ यानी लंबी तरंग दैर्ध्य वाली ताप ऊर्जा होती है, इसे वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प ग्रहण कर लेती है, इसीलिए तो धरती का तापमान गर्म हो पाता है।
6: बिल्कुल सही कहा सूर्य प्रकाश। संगत का असर कहीं ना कहीं तो पड़ता है। तो जैसा कि सूर्य प्रकाश ने कहा कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाती है, क्योंकि ऊष्मा को नीचे का घना कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का वायुमंडल ही सोख लेता है।
7: तो अंकल, ऊष्मा ना सिर्फ धरती से वापस जाती है, बल्कि दोबारा पलट कर धरती पर ही आती है।
6: हाँ विवेक, और संवहन द्वारा जो सतह से जल के वाष्पन द्वारा ऊर्जा सोखी जाती है, वही ऊर्जा ऊंचे स्तर पर जाकर संघनन के रूप में वापस छोड़ दी जाती है।
7: अच्छा,
1: यानी अंक एक संतुलन बना रहता है।
6: हाँ बेटे, टोटल प्लैनेटरी अल्बिडो और धरती से परावर्तित विकिरण की अंतरिक्ष में हानि सूरज की निरंतर आती किरणों से संतुलित हो जाती है।
7: यानी एक ऐसा संतुलन जिसमें निरंतर अंतरिक्ष में होती ऊर्जा की हानि लगातार सूरज की ऊर्जा आपूर्ति से पूरी होती है।
6: हाँ विवेक, और इस संतुलन में महासागर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: हाँ, ये महासागर ऊष्मा का भंडारण करते हैं और उसे ठंडे इलाकों तक पहुँचाते हैं, है ना अंकल?
6: अरे वाह मानव, तुम्हें तो काफी जटिल बातें मालूम है। सूर्य प्रकाश, अब तुम वो नहीं करोगे, जब भी तारीफ करता हूँ तो कुछ ऐसा ही करते हो।
3: नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं वसुधा को आते हुए देख रहा हूँ।
6: क्या बात है।
0: चलिए भाई साहब, खाना तैयार हो गया है। सृष्टि, आओ बेटे मेरे साथ आके।
1: हाँ जी मम्मी। मम्मी, मैं भी आपके साथ आता हूँ।
0: है
1: मानव, कहाँ आता हूँ, बर्तन लगाने या खाना खाने?
5: क्या दीदी, जब सभी बल एक परिवार की तरह कार्य कर रहे हैं तो मैं भी तो अपना बल प्रयोग करूँ ना।
2: तो बेटे वही तो पूछा जा रहा है, खाने में या बर्तन लगाने में?
5: अरे मम्मी, पहले बर्तन लगाने में और फिर खाने में।
6: वाह मानव बेटे वाह। अरे भाई, सबके थोड़े बहुत योगदान से ही तो जीवन का पहिया आगे बढ़ता है।
3: चलो भाई, चलो विनोद खाना खा लो। आओ विवेक, चलो
6: चलो बढ़े खाने की ओर। भाई हाँ वसुधा भाभी, खाना बहुत ही लाजवाब था। खाना वसुधा ने बनाया था, तुमने नहीं?
3: बीवी तो मेरी है ना।
2: आप भी ना, कुछ भी।
5: लीजिए अंकल, सौंप लीजिए। अंकल, आपकी बातों का मानव पर कुछ असर तो हुआ है, वरना आज तक इसने सिर्फ सौंफ मांगी है, दी नहीं है।
3: विनोद, कितनी सारी प्रक्रियाएं इस धरती पर चलती रहती हैं, कितने बल काम करते हैं, सच में यार कमाल है।
6: हाँ सूर्य प्रकाश, ये सब अद्भुत है यार।
5: अंकल, धरती का एक महत्वपूर्ण बल भी है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है।
2: कौन सा बल दीदी?
5: अरे गुरुत्वाकर्षण बल, है ना अंकल? इसी के कारण तो पृथ्वी पर वायुमंडल थमा हुआ है।
6: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि, ये धरती इस गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ एक चुंबक की तरह भी काम करती है।
5: हाँ, धरती के भी चुंबक की तरह दो ध्रुव हैं। पर अंकल, ये धरती एक बड़ी चुंबक कैसे बनी?
6: मानव, वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के चुंबकीय क्षेत्र बनने की शुरुआत शायद सूरज के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरंभ हुई होगी, उस समय जब करोड़ों वर्षों पहले ये धरती एक आग का गोला थी।
5: पर करोड़ों वर्षों बाद भी धरती एक विशाल चुंबक की तरह ही तो बर्ताव करती है।
6: मानव, तुम्हें धरती की संरचना पता है ना?
5: हाँ अंकल, बिल्कुल पता है।
6: तो मानव, धरती के केंद्र में जो कोर है वो अत्यधिक तापमान के होते हुए भीषण दाब के कारण ठोस है। अब अगली परत है तरल बाहरी कोर की, जो करीब 2200 किलोमीटर चौड़ी है। अब इसके ऊपर कौन सी परत है?
5: मेंटल।
6: शाबाश। तो ये बाहरी कोर ठोस अंदरूनी कोर और मेंटल के बीच में परिसंचरित होता रहता है, यानी घूमता रहता है।
5: अंकल, ये परिसंचरित होने वाला तरल बाहरी कोर निकल और लौह का बना होता है ना?
6: हाँ सृष्टि बेटे।
7: अंकल, ये निकल लौह का मिश्रण तात्विक रूप से तो चुंबक नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के कोर का तापमान इतना ज्यादा है कि कोई पदार्थ अपना चुंबकत्व नहीं बनाए रख सकता।
6: बिल्कुल ठीक विवेक, असल में धरती का चुंबकीय क्षेत्र इस पिघले मिश्रण में विद्युतीय प्रवाह के उत्पन्न होने से होता है।
2: वो कैसे भाई साहब?
3: अरे वाह, आज तो वसुधा को भी बहुत रोचक लग रहा है विषय।
2: आप ना अपनी बातें तो रहने ही दो। किसी विषय में रोचकता बात को समझाने वाले से आती है। हाँ।
6: ये मेरी तारीफ में था कुछ।
5: वाह मम्मी, क्या बात बोली है। पापा, आपकी बात पर मम्मी का गर्म होना कंडक्शन का उदाहरण है।
6: क्या बात है बेटे। हो सकता है बेटे, पर धरती के अंदर ये पदार्थ कन्वेक्शन प्रवाह के कारण ही परिसंचरण करते हैं, और ये कन्वेक्शन अंदरूनी और बाहरी कोर के तापमान में भिन्नता के कारण होता है।
5: यहाँ अंदर भी कन्वेक्शन प्रक्रिया?
6: अच्छा, तुम्हें कोरियोलिस बल पता है?
5: हाँ अंकल, ये बल धरती के अपनी धुरी पर घूमने के कारण हवाओं, महासागरों के जल आदि पर प्रभाव डालता है।
6: शाबाश बेटा, तो एक विचार के अनुसार जो कोरियोलिस बल धरती पर भयानक चक्रवात लाता है वो पिघले भारी कोर को रोलर की तरह घुमा देता है।
7: ओहो, तो ये घूमता द्रव डायनमो में तार के कॉइल की तरह काम करता है, अब समझा। फिर परिसंचरण के कारण द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र बनता है।
6: बिल्कुल ठीक समझे विवेक, ये बिल्कुल एक डायनामो की तरह काम करता है।
5: डायनामो जिससे बिजली बनती है, वही ना?
7: हाँ सृष्टि, बिल्कुल वही। इस धरती की प्रक्रियाएं जितनी बाहर कमाल की हैं, उतनी ही अंदर।
3: विनोद चलो भाई तुम आराम कर लो, फिर तुम्हें जाना भी तो है ना।
6: हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, हालांकि बात करने का मन कर रहा है।
3: हाँ, ये सच बात है।
6: चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। अच्छा बच्चों,
5: अच्छा,
6: थोड़ी देर में मिलते हैं।

0: बहुत ही अच्छा लगा, सच कह रहा हूँ मैं, और इतनी सारी बातें पता है इसे मानव को, वाकई बहुत अच्छा,
1: बहुत मजा आया।
2: चलो चलो चलो विनोद, अब तुम्हारी फ्लाइट का टाइम होने वाला है।
0: अच्छा ठीक है, अच्छा बच्चों फिर लौट कर मिलते हैं। हाँ
3: जी। अच्छा अंकल नमस्ते, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सृष्टि बेटा, थैंक यू।
2: विवेक बेटा सामान टैक्सी में रखवा
4: जी।
3: लाइए अंकल, आपका ये बैग मैं उठा लेता हूँ।
0: अरे मानव। चलो ठीक है, ये हल्का है, इसे तुम उठा सकते हो।
3: ठीक है।
0: अच्छा वसुधा भाभी नमस्ते।
5: नमस्ते भाई साहब, नमस्ते।
3: मम्मी मानव देखो कैसे सामान रख रहा है।
5: बहुत ही अच्छा है सृष्टि, धरती के इन बलों की जानकारी से हमारे मानव का बुद्धि बल तो बढ़ा कम से कम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे, सबकी साफ सफाई करते हैं।
1: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
2: बहुत बढ़िया।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: चलो अब तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो

जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

सुनो शारदा 90.8 FM। जय माता की। या देवी सर्वभू

0: वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: द प्रोग्राम्स अंडर शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट आर डिजाइन टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप स्किल्स टू थिंक अबाउट आर्टिस्टिक एंड कल्चरल इंटरवेंशंस क्रिटिकली।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मा चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
0: आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर एक मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 एफएम और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
2: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सब ने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी। अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे जानते हैं? पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे जानते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: सफाई ही आधा ईमान है,
2: यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है।
1: और ये भी तय है, स्वच्छ रहकर ही हम तमाम बीमारियों को मात दे सकते हैं।
2: कैसे, कब कब हाथ धोने चाहिए, चलिए ये हम आपको बताते हैं।
1: खाना बनाने से पहले,
2: खाना खाने से पहले,
1: बच्चों को खाना खिलाने से पहले,
2: शौचालय के प्रयोग के बाद,
1: बच्चों के मल को साफ करने के बाद,
2: बाहर से आने के बाद,
1: पशु को छूने और उनके मलमूत्र को साफ करने के बाद,
2: खांसने और छींकने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथों को धोएं, और हर बार हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
2: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से
2: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
1: जनहित में जारी।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

सुनो शारदा 90.8 FM। जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा।

0: 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. सुनो.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तृतीय स्वरूप मां चंद्र घंटा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता की।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
1: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
1: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
10: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
9: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
10: तो भुगतो।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: जन्मदिन मुबारक हो तारा।

0: अरे हमारे आदत में तो काम वाली बाई या मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे
1: हैं? टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूंगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा पार्टी।

0: तो फिर हम भी करेंगे कचरा पार्टी।
1: हाँ हाँ, हमें जाने की कोई भी जल्दी नहीं है।
2: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
1: हो जाए।
3: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
2: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
1: हाँ, बाहर सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
0: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
4: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
5: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
4: कचरा भी अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
5: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा है।
2: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
4: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
5: बहुत अच्छे तरह। हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
6: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दे तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
0: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी कमरे में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
5: नहीं चौधरी, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
4: कचरा भी आएगा तुम्हारा काम। तो ये गया गीले कचरे में।
1: और मेरे पास है सूखा कचरा।
5: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह गड़बड़ी सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
4: हजारों साल तक सड़ते नहीं
0: और खतरनाक भी होते हैं।
5: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह, अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो।
4: या फिर कहीं शीशे के टुकड़े काम वाले दीदी या कूड़ा इकट्ठा करने वाले भैया को चुप गए तो।
6: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े।
5: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
0: वाह, बार बार इस्तेमाल।
1: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
4: हाँ, आइडिया।
5: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
4: अब आप देखिए अब्बा, हमारी कचरा कला। कचरा पार्टी की कचरा कला।
0: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
7: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
3: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी?

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सबको हाथ बटाना है, टीवी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीवी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीवी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
4: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। फ्री इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
1: 90.8 FM। नमस्कार, मैं श्रुति कीर्ति वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी गौतम बुद्ध नगर। आज मैं सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से जागरूक करने के लिए फाइलेरिया के विषय पर बात कर रही हूं। फाइलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जिसे क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर यह बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है एक पैरासाइट जिम्मेदार होता है, निमेटोड है वो, बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, जिसको ये कैरियर के रूप में मच्छर जो क्यूलेक्स काम करता है। और ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बताऊँगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये मच्छर किसी को काटता है तो पहली बात तो ये तुरंत इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 4 से 5 साल, कभी इससे भी ज़्यादा लंबा पीरियड लग जाता है, 7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है। तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन, लिम्फ नोड्स से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस की तरह इस तरह की बीमारियां देखने में आती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें, अगर हम जितना बच सके मच्छरों से बचाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जैसे डेंगू और मलेरिया का हम जागरूकता अभियान करते हैं, उसी तरह से हमें फाइलेरिया के लिए भी बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आजकल मार्केट में कॉयल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि कहीं भी अगर पानी स्टोर है तो अपने घरों के आसपास, अगर आप अपने घर में भी साफ़ सफाई रखते हैं, पानी कहीं भी जमा ना होने दें। ये हमें विशेष रूप से इस तरह की सावधानी लेकर के चलनी है। बेसिकली पाया ये जाता है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती है और हमारा मलेरिया विभाग, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन और ख़ास करके हमारा पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा होता है सड़कों पर, घरों के आसपास, छत के ऊपर, कई बार कंटेनर्स, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्थान होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें ऐसे पानी को वहाँ से निकालना है। और अगर ऐसा पानी अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो वहाँ पर हमें एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाना है। तो नगर निगम, हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन सब चीज़ों में सक्रिय रहते हैं। मलेरिया विभाग भी लगातार छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था भी करता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों पर हम डीजल और केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जला हुआ मोबिल ऑयल ऑयल और जला हुआ डीजल का भी प्रयोग करके हम लार्वा को रोक सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चाहे डेंगू का एडीज मच्छर हो, मलेरिया का एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, हमें इनकी ब्रीडिंग ही स्टॉप करके हम बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
4: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
3: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।